में से राजा करो। मेरे घर वाले ने तुहाडे मत्थे लगना हुंदा, जदन वह तुहाडे मत्थे लग के जांदा ना बड़ी कमाई हुंदी है, बड़ा सोहना दिन लंघदा उहदा। वह तुहाडा इंतजार कर करके निकलिया। तुहानूं नगर च होर किसे घर जाण दी लोड़ नहीं, प्रशादा पाणी आपां तुहानूं छकाया करांगे, तुसीं बस उहदे जाण तों पहलां पहलां आ जाया करो, तुहानूं नहीं पता तुसीं उहदे लई किन्ने भागां वाले। फकीर निकल के दो चार घर अगे गया तो उन्होंने दरवाजा खोल के वापस उहदे मूंह ते बंद करता। तैनूं कहा सवेरे सवेरे ना आया कर, सारा दिन खराब कर देना, सवेरे सवेरे आ जांदे ने मंगण। जिन्ना नुकसान तेरा मूंह वेख के हुंदा, मेरा तां जी करदा तैनूं इस पिंड दे लागे पन्ने ना लगन दवां। इस घर चों फकीर नूं कुछ नहीं मिलिया। इसे तरह वख वख घरां दे विच फकीर जांदा रहा ते अलग अलग तरह दीआं गल्लां सुणन नूं मिलियां। सारा पिंड गा के कुड़ी नूं कोल बाह के कहण लगा, धीए शायद तैनू तेरा जवाब मिल चुका होगा। असल दे विच किसे दा तुहाडे लई चंगा होना जां माड़ा होना, किसे दा तुहाडे लई करमाला होना जां फिर मनहूस होना, इह तां तुहाडे मन दा वरतारा। इह तां बंदे दे अंदर जो चल रहा वो चीज़ तय कर दी है, कोई बाहरी वरतारा तय थोड़ी करता। कोई दूसरा व्यक्ति साड़ी जिंदगी के उत्ते किदां प्रभाव पा सकता। असल दे विच वो साड़े अपने कर्म होंदे ने, चंगे जां माड़े। जे हुण किते कोई गलत कर रहा ते उहदा खमियाजा उहनूं भुगतना पैणा, उहदे नतीजे उहनूं गलत ही मिलने। वह वक्री गल है कि उन्हें फिर दूजे ते सुटन की कोशिश करनी है। जे को बेईमानी कर रहा तो उन्हें वह सिला जरूर मिलना, पर इंसान है कि वह चीज़ अपने आप के उत्ते कभी लैके खुश ही नहीं। उन्हें यह लगता कि मैं सब कुछ ठीक कर रहा, यह जो मेरे नाल होया ये उहदे करके होया जिहड़ा सवेरे मैनूं मिलिया है, जदके सवेरे मिले वाले नूं तो पता ही नहीं वो अज किन्नू मिलन जा रहा, तो जिन्हों मिलन जा रहा वो किहड़े मूड च बैठा, वह अज फायदा होया बैठा कि नुकसान। सो वरतारा तो सारा इंसान दे अंदर दा, पर इंसान है कि अपने आप के उत्ते कोई गल लैण नूं तैयार ही नहीं। वह हमेशा लभदा कि मैं बाहर किहदे उत्ते थोपां, किहदे उत्ते सुट्टां सारी काज। बस इहो ही तेरे नाल होया, जिथे जिथे जिहदा जिहदा फायदा दिसदा वह तुहानूं वेख के अगे तो गंढ बन लैंदा, तुसीं बड़े चंगे हो। जिहदा नुकसान हुंदा उहदे लई तुसीं माड़े हो। जो कुछ भी कर रहा, जो भी कहानियां बना रहा, जो भी बुनतियां बुन रहा, वह इंसान आप बुन रहा। जिहड़ा मिलिया उहदा की दोष, हुण तूं अज वेख ही लिया। मैं तां उही हाँ, मैं तां उही रब दा जी हाँ जिहड़ा एक घर जांदा, उही मैं दूसरे घर जाना ते उही मैं सारे नगर च। हुण मैं किसे दे लई चंगा ते किसे दे लई बुरा, जे मेरे करके होवे फिर मैं सारयां लई चंगा होवां ते जां फिर सारयां लई बुरा, ते जे मैं हर एक दे लई अलग लग गया इहदा मतलब कि इहदे च मेरा कोई लैण देण नहीं। इह उहनां दे मन दी दशा। ते किसे एक दे नाल नहीं, इह साडे सारयां दे नाल हुंदा। साडे सारयां दे लई आपां बड़े लोक मनहूस करके साइड ते रखे ने,
ਬੜੇ ਆਪਾਂ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਕੇ

0: जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन से मिलेंगे।
1: आहो जी आहो।
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्स्टन विच वी तुहाडी सेवा विच।

0: एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स बोल पावे ना बोल
1: प्यार नु सुनन ली कन्ना भी नहीं दिल दी लोड़ हुंदी
0: कुछ गल्लां कहनियां नहीं पैंदियां बस महसूस करनियां पैंदियां ने
1: एहो गलियां ते मैं हुणे अपनी जुबान वड के हो जाना
0: इस वार गल सिर्फ बोलन दी नहीं दिल दी सुनन दी है
2: जिंदगी किवें कटांगे मैं नहीं रह सकती ओदे बिना मैनू ओह चाहिदा
0: रिलीजिंग वर्ल्ड वाइड 4th सितंबर रिटन एंड डायरेक्टेड बाय राकेश धवन लव इमोशंस अदे रिलेशनशिप्स दी कहानी बोल पावे ना बोल
3: हुण थोड़े मोढे नाल मोढा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर वी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा
4: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तो वेरबी टोयोटा दे नाल
3: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस
5: ਫੁਲਕਾਰੀ ਉੱਤੇ ਵੇਲ ਬੂਟੀਆਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਚਾਦਰੇ ਤੇ ਪਾ ਦੇ ਮੋਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਰੇਡੀਓ

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

0: रेडियो। हाँ जी 1674।
1: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो बंसल इमीग्रेशन .com.au।
3: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला, ना जाओ इधर उधर, सीधे आओ आईएमई एडवाइजर। अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड़ नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा, जा स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस। आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02906316 18 पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी। I am the advisor.

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

नहीं कर सकते। गाने हेटरों के मुंह पे जाके बजे बूम, क्लियर है विजन मेरी, आई डोंट नीड नो ज़ूम। ऋतिक नहीं फिर भी मचेगी धूम, दोनों हाथ उठा के हवा में बेबी घूम।

0: तुहाडे मोढे नाल मोढा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर वी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
1: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपने टोयोटा चूज करन लई जो ने इक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
2: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
3: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
2: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
3: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
4: इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, ध्यान से इश्क कीजिए, क्योंकि शादी भी हो सकती है। सो दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना राजीव ठाकुर और आप सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। हंसिए, मस्त रहिए, नाचते रहिए।

0: जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स टंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो।
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स टंच विच वी तुहाडी सेवा विच।

ग्रोवर्स, विंग ग्रोवर्स, हांजी 16-74, ये नहीं है 71-72, ये है 16-74, ये है 16-74, सुनते रहो हांजी AM।

0: जिप्पी म्यूजिक अते म्यूजिक टाइम प्रोडक्शंस पेश करते ने पंजाबी फिल्म जुदा अधूरे प्यार दी पूरी कहानी।
1: मेरी जिंदगी चोन वाली पहली कुड़ी भी तू है ते आखरी भी तू।
0: गुलाब सिद्धू अते जैस्मीन पसीन दी अदाकारी वेखो गिल रौंता दी लिखी अते सिमरजीत सिंह वल्लों डायरेक्ट कीती पंजाबी फिल्म जुदा। रिलीज होवेगी 21 अगस्त नु।
2: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर सिद्धे आओ आईएमई एडवाइजर अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नु नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491 स्किल असेसमेंट पार्टनर वीजा पेरेंट वीजा जां स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर कॉल 02-9063-1618 हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली।
3: मेरा नाम है रतन नूरा और काम करता हूँ खत्म पूरा भी लव यू ऑल भावनाओं को समझो।
4: दोस्तों मैं हूँ सुनील पाल और आप लोग सुन रहे हैं मुझे रेडियो हांजी पर रेडियो हांजी 1674 AM। अब आपका AM सिर्फ रेडियो हांजी सुन रहे होना चाहिए। हांजी हांजी अभी ना कहना ना जी ना जी।

0: यो हाँ जी 1674।
1: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो।
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स तंच विच वी तुहाडी सेवा विच। हुन थोड़े मोटे नाल मोड़ा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
3: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल।
2: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
4: दिला दे घर, बना दे घर, दिला दे घर।
5: Oh my God, this is original.

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा।
1: हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी रेडियो हांजी।
2: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो, सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: जिप्पी म्यूजिक अते म्यूजिक टाइम प्रोडक्शंस पेश करते ने पंजाबी फिल्म जुदा अधूरे प्यार दी पूरी कहानी।
1: मेरी जिंदगी चोन वाली पहली कुड़ी भी तू आ ते आखरी भी तू।
0: गुलाब सिद्धू अते जैस्मीन पसीन दी अदाकारी वेखो गिल रौंता दी लिखी अते सिमरजीत सिंह वल्लों डायरेक्ट कीती पंजाबी फिल्म जुदा। रिलीज होवेगी 21 अगस्त नू।
2: हुन थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नू होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
3: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। थोड़ी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे थोड़ी अपनी टोयोटा चूज करन ले जो ने एक दहाके तो वेरबी टोयोटा दे नाल।
2: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग।
4: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
5: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साला तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
4: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
5: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
6: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो।
7: सत श्री अकाल, इश बॉय बादशाह, ते तुसी सुन रहे हैं 1674 AM रेडियो। हां जी।

0: कुछ गल्लां कहनियां नहीं पैंदियां, बस महसूस करनियां पैंदियां ने।
1: एहो गल है ते मैं हुणे अपनी जबान वट के हो जाना।
0: इस बार गल सिर्फ बोलन दी नहीं, दिल दी सुनन दी है।
2: जिंदगी किवें कटांगी, मैं नहीं रह सकती ओदे बिना, मैनू ओ चाहिदा।
0: रिलीजिंग वर्ल्ड वाइड 4 September, रिटन एंड डायरेक्टेड बाय राकेश धवन। लव, इमोशंस अदर रिलेशनशिप्स दी कहानी, बोल पावे ना बोल।
3: सत श्री अकाल जी, मैं तुहाडा अपना रविंदर गरेवाल, तुसी सुन रहे हो।

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: जिपी म्यूजिक अते म्यूजिक टाइम प्रोडक्शंस पेश करदे ने पंजाबी फिल्म जुदा, अधूरे प्यार दी पूरी कहानी।
3: मेरी जिंदगी चोन वाली पहली कुड़ी भी तू, आखरी भी तू।
2: गुलाब सिद्धू अते जैस्मीन पसीन दी अदाकारी, वेखो गिल रौंता दी लिखी अते सिमरजीत सिंह वल्लों डायरेक्ट कीती पंजाबी फिल्म जुदा। रिलीज होवेगी 21 अगस्त नू।
4: हुन थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नू होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा,
5: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन ले, जो ने एक दहाके तो वेरी बी टोयोटा दे नाल।
4: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जीलोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा, द स्मार्ट चॉइस।
6: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
7: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
6: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
7: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
6: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
7: आहो जी आहो,
6: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
8: कुछ गल्लां कहनियां नहीं पैंदियां, बस महसूस करनियां पैंदियां ने।
9: हाय नी, इन्ना सोहना मुंडा भी गूंगा है।
8: इस बार गल सिर्फ बोलन दी नहीं, दिल दी सुनन दी है।
10: मुंडे नु चाहिदी है सारी रात फोन ते गल्लां करन वाली कुड़ी, तू बोल नहीं सकदी, ओने नहीं होना तेरे पीछे।
8: लव इमोशंस अते रिलेशनशिप्स दी कहानी। रिदम बॉयज एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स बोल पावे ना बोल, रिलीजिंग वर्ल्ड वाइड 4 सितंबर। रिटन एंड डायरेक्टेड बाय राकेश धवन।
11: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला, ना जाओ इधर उधर, सिद्धे आओ आईएमई एडवाइजर, अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड़ नू। नाले वरियां तो स्किल वीजा 186-189-190-482-491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा, चा स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक, हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस। आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02-9063-1618। हुन पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर।
12: हाँ जी हाँ जी, ओए हाँ जी हाँ जी,
13: हाँ जी रेडियो
14: तो सुनना करना।
15: You know, this is trippy.

0: हमें भी दियो थोड़ा जा टाइम तुम्हारे लिए, प्रोग्राम इनसाइट रिपोर्ट लेके आने फिर अगले सेगमेंट दे विच।
1: हां जी हां जी, ओए हां जी हां जी,
2: हां जी रेडियो।
3: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
4: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
3: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
4: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन
3: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
4: आहो जी आहो,
3: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
5: हाय ऑस्ट्रेलिया, हाय मेलबर्न, मैं आपका माजन बोल रहा हूँ यानी की मैडी, और आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM।

0: गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर? हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो।
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
2: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर, सीधे आओ आईएमई एडवाइजर। अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा, जां स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस। आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02906316 18, हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर।
3: जिपी म्यूजिक अते म्यूजिक टाइम प्रोडक्शंस पेश करते ने पंजाबी फिल्म जुदा, अधूरे प्यार दी पूरी कहानी।
4: मेरी जिंदगी चोन वाली पहली कुड़ी भी तू, आखरी भी तू।
3: गुलाब सिद्धू अते जैस्मीन पसीन दी अदाकारी, वेखो गिल रौंता दी लिखी अते सिमरजीत सिंह वल्लों डायरेक्ट कीती पंजाबी फिल्म जुदा। रिलीज होवेगी 21 अगस्त नु।
5: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
6: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमिग्रेशन दा, जिन्ना ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
5: नंबर दा दे बंसल इमिग्रेशन वालियां दा।
6: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो बंसल immigration.com.au।
7: Rhythm Boys Entertainment presents बोल पावे ना बोल।
8: प्यार नु सुनन ली कन्ना दी नी, दिल दी लोड़ दी।
7: कुछ गल्लां कहनियां नहीं पैंदियां, बस महसूस करनियां पैंदियां नी।
8: एहो गल है ते मैं हुणे अपनी जुबान वट के हो जाना।
7: इस बार गल सिर्फ बोलन दी नहीं, दिल दी सुनन दी है।
9: सारी जिंदगी किवे कटांगी, मैं नहीं रह सकती ओदे बिना, मैनू ओ चाहिदा।
7: Releasing worldwide 4th September, written and directed by Rakesh Tawan. Love, emotions, adi relationships di kahani. Bol paave na bol.
2: Australia vich immigration da masla, na jao idhar udhar. Sidhe aao IME advisor. Apni maa boli vich samjhan tuhadi lod nu. Naale varyan to skill visa 186 189 190 482 491, skill assessment, partner visa, parent visa, jaan student visa to PR tak har immigration process li expert guidance. Aaj hi parose naal sampark karo IME advisor, call 02906316 18, hun parameta sydney ate new delhi vich vi IME advisor.
7: कुछ गल्लां कहनियां नहीं पैंदियां, बस महसूस करनियां पैंदियां ने।
5: हाय नी, इन्ना सोहना मुंडा वी गूंगा है।
7: इस बार गल सिर्फ बोलन दी नहीं, दिल दी सुनन दी है।
9: मुंडे नु चाहिदी है सारी रात फोन ते गल्लां करन वाली कुड़ी, तू बोल नहीं सकदी, ओने नहीं होना तेरे पीछे।
7: लव, इमोशंस, अदे रिलेशनशिप्स दी कहानी। रिदम बॉयज एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स बोल पावे ना बोल। रिलीजिंग वर्ल्ड वाइड 4th सितंबर, रिटन एंड डायरेक्टेड बाय राकेश तवन।
5: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
6: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमिग्रेशन दा, जिन्ना ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
5: नंबर दा दे बंसल इमिग्रेशन वालियां दा।
6: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स बोल पावे ना बोल
1: प्यार नु सुनन ली कन्ना दी नी दिल दी लोड़ हुंदी
0: कुछ गल्लां कहनियां नहीं पैंदियां बस महसूस करनियां पैंदियां ने
1: एहो गल्लां ते मैं हुणे अपनी जुबान वट के हो जाना
0: इस बार गल सिर्फ बोलन दी नहीं दिल दी सुनन दी है
2: जिंदगी किवें कटांगे मैं नहीं रह सकती ओदे बिना मैनू ओह चाहिदा
0: रिलीजिंग वर्ल्ड वाइड 4th सितंबर रिटन एंड डायरेक्टेड बाय राकेश धवन लव इमोशंस अदर रिलेशनशिप्स दी कहानी बोल पावे ना बोल
3: हुन थोड़े मोड़े नाल मोड़ा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नू होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा
4: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन ले जो ने एक दहाके तो वेयर बी टोयोटा दे नाल
3: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस
5: Peace.

0: कुछ गल्लां कहनियां नहीं पैंदियां, बस महसूस करनियां पैंदियां ने।
1: हाय नी, इन्ना सोहना मुंडा वी गूंगा है।
0: इस बार गल सिर्फ बोलन दी नहीं, दिल दी सुनन दी है।
2: मुंडे नु चाहिदी है सारी रात फोन ते गल्लां करन वाली कुड़ी। तू बोल नहीं सकदी, ओने नहीं आना तेरे पीछे।
0: लव इमोशन अदे रिलेशनशिप्स दी कहानी। रिदम बॉयज एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स बोल पावे ना बोल, रिलीजिंग वर्ल्ड वाइड 4 सितंबर। रिटन एंड डायरेक्टेड बाय राकेश धवन। ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर, सिद्धे आओ आईएमई एडवाइजर। अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड़ नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा या स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस। आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर। कॉल 02-9063-1618। हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर।

0: जिप्पी म्यूजिक अते म्यूजिक टाइम प्रोडक्शंस पेश करते ने पंजाबी फिल्म जुदा अधूरे प्यार दी पूरी कहानी।
1: मेरी जिंदगी चोन वाली पहली कुड़ी भी तू आखरी भी तू।
0: गुलाब सिद्धू अते जैस्मीन पसीन दी अदाकारी वेखो गिल रौंता दी लिखी अते सिमरजीत सिंह वालों डायरेक्ट की पंजाबी फिल्म जुदा। रिलीज होवेगी 21 अगस्त नू।
2: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वल ले लो।
3: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
2: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
3: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
2: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
3: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
4: रेडियो हाँ जी 1674 AM।

0: जिप्पी म्यूजिक अते म्यूजिक टाइम प्रोडक्शंस पेश करते ने पंजाबी फिल्म जुदा अधूरे प्यार दी पूरी कहानी।
1: मेरी जिंदगी चोन वाली पहली कुड़ी भी तू हां ते आखरी भी तू।
0: गुलाब सिद्धू अते जैस्मीन पसीन दी अदाकारी वेखो गिल रौंता दी लिखी अते सिमरजीत सिंह वल्लों डायरेक्ट कीती पंजाबी फिल्म जुदा। रिलीज होवेगी 21 अगस्त नु।
2: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वल ले लो।
3: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
2: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
3: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स टंच।
2: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
3: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 Garfield Road, East Riverston, which we, Tuhadi Seva Vich.

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालिया दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हुन थोड़े मोटे नाल मोड़ा मिला के थोड़ी तरक्की दी रानू होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउन दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा,
3: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपने टोयोटा चूज करन ले, जो ने एक दहाके तो वेरी बी टोयोटा दे नाल।
2: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लॉन्ग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा, द स्मार्ट चॉइस।
4: ਚਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੀਤਰਪਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ 1674 AM।

0: यार तू इतनी इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: हाँ भाई सिडनी वालियो, तुसी सुन रहे हो सिडनी दा अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी।
1: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर, सिद्धे आओ आईएमई एडवाइजर, अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा, जस्ट स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक, हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस, आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02-9063-1618, हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर।
2: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
3: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
2: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
3: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्सटंच,
2: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
3: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच भी तुहाडी सेवा विच।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हेलो, मैं हूँ सनी देओल और आप सुन रहे हैं हां जी 1674 AM।
3: सत श्री अकाल जी, मैं हाँ थोड़ा अपना युवराज हूँ और सुन रहे हो रेडियो हां जी 1674।

रेडियो हाँ जी 1674 एम दे उत्ते तुहाडा सारयां दा स्वागत जी इनसाइट रिपोर्ट प्रोग्राम दे विच तुहाडा जी आयां नूं आखदे आं स्वागत करदे आं और इनसाइट रिपोर्ट दे विच अज दे दिन गल USSR दी करनी है लंघे वेले दी गल हैगी है। असल च यह मौका इस करके बनया क्योंकि यूक्रेन दा आज़ादी दिहाड़ा हाले लंघ के ही गया 24 अगस्त नूं हुंदा है। यूक्रेन की आज़ादी दिहाड़े के मौके के उत्ते बरतानिया के लातविया के ते होर दूसरे देशों के दे, राष्ट्रपति या राष्ट्र प्रमुख उत्ते पहुँचते हैं। वैसे जदों दूसरे देशों के दे, राष्ट्र प्रमुख पहुँचते हैं तो यह रूस के लिए जिहड़ी अजकल जंग एक चल रही है उहदे लिए एक खतरा दस्या जा रहा है क्योंकि एक यह भी गल तुर पई है कि नेटो ना सही तो फिर एक ऐसी ताकत ही बना ली जाए जिस यूक्रेन उन्हों का साथी हो जिदे च USSR के सबका साथी जड़े ने साथ देन यानी लातविया या जड़े होर दूसरे मुल्क हैगे ने एस्टोनिया वगैरह पर बरतानिया के प्रधानमंत्री भी इत्थे पहुँचते हैं सो एक बड़ा सुनेहा भी चला जाता है। खैर ये गल जो हुई है खबर जो मैं पढ़ी ये तो फिर मैं सोचा कि इनसाइट रिपोर्ट के हूँ ये गल्लां तां नहीं करनियां चलो खैर ये तो हो ही रही है क्योंकि डे टू डे पॉलिटिक्स होंगी है ये बदलती बिगड़ती रहती हैगी है बड़ी छेती हालात बदल जाते हैं बिगड़ जाते हैं जिवें हुण असीं सीरिया च देखिया खबरां च तुसीं सुनिया ही होना कि सीरिया जिन्हों लगभग 4 दहाके अमेरिका अतवादी दसदा रहा हूँ एक मित्र देश दसन लग पे क्यों क्योंकि सीरिया दे विच हुण उन्हां दा बनाया होया एक राष्ट्रपति हैगा रूस वाला नहीं हैगा। पर यह जिहड़ी गल अज इत्थों हुण मैं करन लग्या इत्थों सोचिया कि इनसाइट रिपोर्ट प्रोग्राम की शुरुआत करिए यह सी कि यह बैलेंस जिहड़ा है यह दुनिया च एक बैलेंस अमरीका ने जिहड़ा हुण बिगाड़ के रखिया अमरीका इकलौती ताकत हुण रह गया चीन दूसरी उभरती ताकत बन रहा पर ओडी बराबर की ताकत हले भी नहीं बन पा रहा है अमरीका नू खुल के अखा नहीं दिखा सकता है चीन वो अलग गल है कि अमेरिका भी चीन नहीं खुल के अखा दिखा सकता अमेरिका नू भी पता है कि चीन जे उन्हां दे बराबर दा नहीं तो उन्हां तो कितने घट भी नहीं है कि आए बिच भिड़ के अमरीका भी अपना नुकसान ही करवाऊगा पर वो गल नहीं जो अमेरिका ने इतिहास से देखी है जिमें सोवियत संघ हुंदा सी सोवियत यूनियन या USSR या यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स जो मर्जी तुसी कह लो साबका रूस उस वेले एक सत्ता का बैलेंस हुंदा सी जदों USSR सी और उस वेले सत्ता का यह बैलेंस जिहड़ा दुनिया दे विच बहुत जरूरी सी क्योंकि एक पासे कैपिटलिस्ट सोसाइटी सी ते दूसरे पासे एक लैफ्टिस्ट सोसाइटी सी। हालांकि इत्थे भी बैलेंस बहुत जरूरी है बैलेंस इस करके जरूरी है कि जदों तुसी उस बैलेंस नू नहीं बना पाते किसी एक कंट्री दे विच भी तो उत्थे भी जिहड़ा किसी ना किसी तरीके दे नाल तरक्की नहीं हो सकती। उदाहरण के तौर दे उत्ते रशिया जिथे बड़े लंबे चिर तक लैफ्टिस्ट पार्टियां ने राज किया जार दे जान तो बाद जार जिहड़ा आखिरी राजा सीगा रूस का उस तो बाद और नॉर्थ कोरिया चाइना कंप्लीटली लैफ्टिस्ट सोसाइटीज़ हैगियां ने क्यूबा टू सम एक्सटेंट ये इन्निया ज़्यादा लैफ्टिस्ट हैगियां ने कि उत्थे एक बैलेंस ही नहीं हो पा रहा क्योंकि इन्हां कंट्रीज़ दे विच मैं इदा नहीं कह रहा है कि लैफ्टिस्ट सोच माड़ी हैगी है या राइट विंगर सोच चंगी हैगी है पर यह चक्कर यह है कि बैलेंस होना बहुत जरूरी है। हुण अमेरिका दे विच अज दी तरीक दे विच बहुत ज़्यादा राइट विंग आइडियोलॉजी जदों तो ट्रंप हैगे ने वह भारी है हालांकि अमेरिका दे विच सत्ता का बैलेंस करन वाली दूसरी पार्टी लैफ्टिस्ट तो नहीं कही जा सकती पर हाँ सेंट्रलिस्ट पार्टी एक मनी जा सकती हैगी पर डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी ही हमेशा सत्ता च रही तो अमेरिका का ही नहीं दुनिया का भी नुकसान होगा ठीक इस तरीके दे नाल जिवें रूस का नुकसान लैफ्टिस्ट पार्टी कर रही है चाइना का नुकसान कम्यूनिस्ट पार्टी हालांकि चाइना के लिए अपने लिए गुड हैगा वो बट वो लोंग टर्म के कितना चंगा होगा कितना माड़ा होगा इहदा फैसला तो भविख कर सकता है पर यह सत्ता का बैलेंस जिहड़ा बहुत जरूरी है। खब्बे पक्षी ते सज्जे पक्षी ताकतां जिहड़ियां ने या मिड सेंट्रलिस्ट ताकतां जिहड़ियां ने वो होनियां चाहीदियां ने। इंडिया दे विच भाजपा जिन्हों एक राइट विंगर सरकार मान लिया जाता है तो कांग्रेस जिन्हों एक सेंट्रलिस्ट सरकार मान लिया जाता है अब या पार्टियां मान लिया जाता है। हुण जे
ਕੰਟੀਨਿਊ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਰਹੂਗੀ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਇਆ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਲੈਫਟਿਸਟ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਲਿਬਰਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੱਤਾ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਆ ਉਹ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਖੈਰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚੀ, ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ USSR ਯਾਨੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸੋਵੀਅਤ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਰਿਪਬਲਿਕਸ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਹੁਣ ਕਿ ਇਹਦੀ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ, USSR ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ, ਜਾਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਦਾ ਪਤਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਊਜ਼ ਐਂਡ ਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਇਨਸਾਈਟ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਪਤਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪਤਨ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਸ਼ੋ, ਕੁਛ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਫੈਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਪਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਨਾਇਕ ਜਿਹਨੂੰ ਰੂਸ ਖਲਨਾਇਕ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਔਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ, USSR ਦੇ ਬਣਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਨਸਾਈਟ ਰਿਪੋਰਟ।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: Hi, this is Ayushman Khurana and you're listening to Radio Hanji।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: You are listening.
1: Haji Haji Haji Haji Haji Haji Radio Haji
2: Radio Haji 1674 AM 24/7 Indian Radio Sydney ka apna Indian Radio Station
1: Radio Haji
0: Stay tuned.
3: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
4: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ये स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
3: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
4: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
5: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ।

हाय, मैं हूं कपिल शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM। और ये जिन्होंने रेडियो ये खोला है वो मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे अच्छे गाने चलाएंगे। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये जो भी चलाएंगे बहुत अच्छा चलाएंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा। सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। थैंक यू।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: गौड़ी सुखमी महला पंजवा सुखमी सुख अमृत प्रभ नाम भत जना कै मन विश्राम सलोक एक ओंकार सतगुर प्रसाद
1: आद गुर ए नमै जुगाद गुर ए नमै सतगुर ए नमै श्री गुरुदेव ए नमै
0: सतनाम श्री वाहिगुरु अष्टपदी सिमरो सिमर सिमर सुख पावो कल कलेश तन माहे मिटावो
1: सिमरो जस प्रसंबर एकै नाम चवत अगनत अनेकै
0: वेद पुराण सिमर सुधाखर कीने राम नाम एकाखर
1: इनकै जीव सावै ताकि महिमा गनी न आवै
0: कांखी एकै दर्श तुहारो नानक कुन संग मोहे उधारो
1: सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विश्राम रहाओ
0: प्रभु कै सिमरन गर्भ नवसै प्रभु कै सिमरन दुख जम नसै
1: प्रभु कै सिमरन काल पर हरै प्रभु कै सिमरन दुश्मन टरै
0: प्रभु सिमरत काछ बिघन न लागै प्रभु कै सिमरन आनंद न जागै
1: प्रभु कै सिमरन भव न व्यापै प्रभु कै सिमरन दुख न संतापै
0: प्रभु कै सिमरन सार कै संग सरबन दा नानक हर अंग
1: प्रभु कै सिमरन सिद्ध न उनित प्रभु कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध
0: प्रभु कै सिमरन जपता पूजा प्रभु कै सिमरन बिनसै दूजा
1: प्रभु कै सिमरन तीर्थ स्नानी प्रभु कै सिमरन दरगाह मानी
0: प्रभु कै सिमरन होय सो भला प्रभु कै सिमरन सो फल फला
1: सि सिमरै जिने आप सिमराए नानक ताकै लागो पाए
0: प्रभु कै सिमरन सब ते ऊंचा प्रभु कै सिमरन उदरे मूचा
1: प्रभु कै सिमरन तिसना बुझै प्रभु कै सिमरन सब के सूझै
0: प्रभु कै सिमरन आही जम तरसा प्रभु कै सिमरन पूर्ण आसा
1: प्रभु कै सिमरन की मल जाए अमृत राम रिद महे समाए
0: प्रभु जी बसै साध की रसना नानक जन का दासन दसना
1: प्रभु को सिमरै सी धनवंते प्रभु को सिमरै सी पतवंते
0: प्रभु को सिमरै सी जन परवान प्रभु को सिमरै सी पुरख प्रधान
1: प्रभु को सिमरै सी बेमुहताजे प्रभु को सिमरै सी सर्व के राजे
0: प्रभु को सिमरै सी सुखवासी प्रभु को सिमरै सदा अविनाशी
1: सिमरन ते लागे जिन आप दयाला नानक जन की मंगे रवाला
0: प्रभु को सिमरै सी पर उपकारी प्रभु को सिमरै तिन सद बलिहारी
1: प्रभु को सिमरै सी मुख सुहावै प्रभु को सिमरै तिन सुख बिहावै
0: प्रभु को सिमरै तिन आत्म जीता प्रभु को सिमरै तिन निर्मल रीता
1: प्रभु को सिमरै तिन अंध घनेरे प्रभु को सिमरै बसे हर नेरे
0: संत कृपा ते आंदन जाग नानक सिमरन पूरै भाग
1: प्रभु कै सिमरन कारज पूरै प्रभु कै सिमरन कबू न जूरै
0: प्रभु कै सिमरन हर गुण बानी प्रभु कै सिमरन सह समानी
1: प्रभु कै सिमरन निचल आसन प्रभु कै सिमरन कमल विगासन
0: प्रभु कै सिमरन अनहर चुनकार सुख प्रभु सिमरन का अंत न पार
1: सिमरै से जन जिन कुर पर मैया नानक तिन जन सरनी पैया
0: हर सिमरन कर भात प्रगटाए हर सिमरन लग बेद उपाए
1: हर सिमरन पैसे जति दाते हर सिमरन नीचो कुण जाते
0: हर सिमरन धारी सब धरना सिमर सिमर हर कारण करना
1: हर सिमरन क्यों सगल अकारा हर सिमरन मैं आप निरंकार
0: कर कृपा जिसे आप बुझाया नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया
1: सुख मनी सुख अमृत पब नाम भगत जना कै मन विश्राम अठ इक श्लोक
0: दीन दर दुख भंजना घट घट नाथ अनाथ शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रसाथ सत नाम श्री वाहे गुरु अष्टपदी
1: या मात पिता सुतमीत ना भाई मन उहा नाम तेरा संग सहाय
0: जह महा भयान दूत जम दल तह केवल नाम संग तेरा चले
1: जह मुश्किल होवे अत भारी हर को नाम खिन माहे उधारी
0: अनक पुनः चरण करत नीता रह हर को नाम कोट पापर हरै
1: गुरमुख नाम जपो मन मेरे नानक पावो सुख नेरे
0: सगल सृष्ट को राजा दुखिया हर का नाम जपत हि सुखिया
1: लाख करोड़ी बंधन परै हर का नाम जपत निस्तरै
0: अनक माया रंग तिख न बुझावै हर का नाम जपत आगावै
1: ये मार्ग हो जात कीला तै हर नाम संग होत सुहेला
0: ऐसा नामन सदा ध्याइयै नानक गुरमुख परमगत पाइयै
1: सूटत नाही को लख बाही नाम जपै तै पार पराही
0: अनक बगन जह आए संघारै हर का नाम तत्काल उधारै
1: अनक जोन जन मैं मर जाम नाम जोत पावै विश्राम
0: हौ मैला मल कबहु ना धोवै हर का नाम कूट पाप खोवै
1: ऐसा नाम जपो मन रंग नानक पाइयै साध कै संग
0: जिह मार्ग के गन जाहे न पूसा हर का नाम उहा संग तोसा
1: जै पेंडे महा अंध गुबारा हर का नाम संग उजियारा
0: जहां पंथ तेरा को न सुजानू हर का नाम तह नाल पछानू
1: जा महा बयान तप प्रोघाम ते हर के नाम की तू ऊपर छाम
0: जहां तिरखा मन तुझ आ कर खै तह नानक हर हर अमृत बरखै
1: भगत जना की बर्तन नाम संत जना कै मन विश्राम
0: हर का नाम दास की ओट हर कै नाम उधरे जन कोट
1: हर जस कर संत दिन रात हर हर औखत साध कुमार
0: हर जन कै हर नाम निदान पार ब्रह्म जन की नो दान
1: मन तन रंग रति रंग एक है नानक जन कै बिरद विवेकै
0: हर का नाम जन को मुक्त जोत हर कै नाम जन को तृप्त भुगत
1: हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जपत का परे न भंग
0: हर का नाम जन की वडियाई हर कै नाम जन शोभा पाई
1: हर का नाम जन को भोजो हर नाम जपत कछ नाहे बिजो
0: जन राता हर नाम की सेवा नानक पूजै हर हर देवा
1: हर हर जन के मालिक जीना हर धन जन को आप प्रभु दीना
0: हर हर जन कै ओट सतानी हर प्रताप जन अवर न जानी
1: ओत पो जन हर सराते सुन समाद नाम रसमाते
0: आठ पहर जन हर हर जपै हर का भात प्रगट नी छपै
1: हर की भगत मत पौ करै नानक जन संकेते तरै
0: पार जात एहो हर को नाम काम तेन हर हर गुण गाम
1: सब ते उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर दुख लथा
0: नाम की महिमा संत रिदवस है संत प्रताप दुर्त सब नसै
1: संत का संग उड़ भागी पाई है संत की सेवा नाम धियाई है
0: नाम तुल का छबर न होए नानक गुरमुख नाम पावै जन कोए
1: सुखमनी सुख अमृत पब नाम भगत जना कै मन विश्राम अठ दो श्लोक
0: बहु शास्त्र बहु सिमृति पेखे सर्ब टंडोल पूजस नाही हर हरे नानक नाम अमोल सत नाम श्री वाहे गुरु अष्टपदी
1: आप ताव ज्ञान सब ध्यान खर शास्त्र सिमृत वख्यान
0: योग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया सगल त्याग मन मध्य फिरे ਦਿਆ
1: ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਏ ਬਹੁ ਜਤਨਾ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਹੋ ਮੈਂ ਬਹੁ ਰਤਨਾ
0: ਸਰੀਰ ਕਟਾਏ ਹੋ ਮੈਂ ਕਰ ਰਾਤੀ ਵਰਤ ਨੇਮ ਕਰੈ ਬਹੁ ਭਾਂਤੀ
1: ਨਹੀਂ ਤੁਲ ਰਾਉ ਨਾਮ ਵਿਚਾਰ ਨਾਨੂ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਇੱਕ ਵਾਰ
0: ਨੌ ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਮੀ ਫਿਰੈ ਚਰ ਜੀਵੈ ਮਹਾ ਉਦਾਸ ਤਪੀਸਰ ਥੀਵੈ
1: ਅਗਨ ਮਾਏ ਹੋ ਪ੍ਰਾਨ ਕਨਕ ਅਸ ਹੈ ਬੋਰਦਾਨ
0: ਲਿਓਲੀ ਕਰਮ ਕਰੈ ਬਹੁ ਆਸਨ ਜੈਨ ਮਾਰਗ ਸੰਯਮਤ ਸਾਧਨ
1: ਨਿਮਕ ਨਿਮਕ ਕਰ ਸਰੀਰ ਕਟਾਵੈ ਤੋ ਵੀ ਹੋ ਮੈਂ ਮੈਲ ਨਾ ਜਾਵੈ
0: ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਸੰਸਰ ਕਛ ਨਾਹੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪਤ ਗਤ ਪਾਹੇ
1: ਮਨ ਕਾਮਨਾ ਤੀਰਥ ਦੇ ਛੁਟੈ ਗਰਭ ਗੁਮਾਨ ਨਾ ਮਨ ਤੇ ਹੁਟੈ
0: ਸੋਚ ਕਰੈ ਦਿਨ ਸਾਰਾਤ ਮਨ ਕੀ ਮੈਲ ਨਾ ਤਨ ਤੇ ਜਾਤ
1: ਦੇਹੀ ਕੋ ਬੋ ਸਾਧਨਾ ਕਰੇ ਮਨ ਤੇ ਕਬੂ ਨੂੰ ਭਿਖਿਆ ਟਰੈ
0: ਜਲ ਤੋ ਵੈ ਬਹੁ ਦੇਹ ਅਨੀਤ ਸੁਧ ਕਹਾ ਹੋਏ ਕਾਚੀ ਭੀ
1: ਮਨ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਊਚ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਉਦਰੇ ਪਤਤ ਬਹੁ ਮੂਚ
0: ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਜੋ ਕਾ ਭਉ ਬਿਆਪੈ ਅਨਕ ਜਤਨ ਕਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਧਰਾਪੈ
1: ਏਕ ਅਨੇਕ ਗੰਨੀ ਬੂਜੈ ਕੋਟ ਪਾਵ ਦਰਗੈ ਨੀ ਸਿਜੈ
0: ਛੂਟ ਸਨਾਹੀ ਉਬ ਪਾਇਆਲ ਮੋਹਿ ਬਿਆਪੈ ਮਾਇਆ ਜਾਲ
1: ਅਵਰ ਕਰਤੂ ਸਗਲੀ ਜਮਡਾਨੈ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਬਿੰਤਿਨ ਨੀਮਾਨੈ
0: ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਦੁਖ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਬੋਲੈ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ
1: ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਜੇ ਕੋ ਮੰਗੈ ਸਾਜਨਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਗੈ
0: ਜੇ ਕੋ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਮਿਟਾਵੈ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਸਦ ਗਾਵੈ
1: ਜੇ ਕੋ ਆਪਣੀ ਸੁਭਾ ਲੋਰੇ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਇਹ ਹੋ ਮੈਂ ਛੋਰੇ
0: ਜੇ ਕੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੇ ਡਰੈ ਸਾਜਨਾ ਕੀ ਸ਼ਰਨੀ ਪਾਰੈ
1: ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੋ ਪਵ ਦਸ ਪਿਆਸਾ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕਹਿ ਬਲ ਬਲ ਜਾਸਾ
0: ਸਗਲ ਪੁਰਖ ਮੈਂ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਾ ਕੈ ਮਿਟੈ ਬਿਮਾਨ
1: ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਜਾਣਾ ਨੀਚਾ ਸੋ ਉਗਨੀਏ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ
0: ਜਾਕਾ ਮਨ ਹੋਏ ਸਗਲ ਕੀਰੀਨਾ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤਿਨ ਘਟ ਘਟ ਚੀਨਾ
1: ਮਨ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬੁਰਾ ਮਟਾਨਾ ਪੇਖ ਹੈ ਸਗਲ ਸਿਸ਼ਟ ਸਾਜਨਾ
0: ਸੁਖ ਦੁਖ ਜਨ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤਾ ਨਾਨਕ ਪਾਪੋ ਨਹੀਂ ਲੇਪਾ
1: ਨਿਰਧਨ ਕੋ ਧਨ ਤੇਰੋ ਨਾਉ ਨਿਥਾਵੇ ਕੋ ਨਾਉ ਤੇਰਾ ਥਾਉ
0: ਨਿਮਾਨੇ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੋ ਮਾਨ ਸਗਲ ਘਟਾ ਕੋ ਦੇਵੋ ਦਾਨ
1: ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਹਰ ਸੁਆਮੀ ਸਗਲ ਘਟਾ ਕੇ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ
0: ਆਪਣੀ ਗਤ ਮਿਤ ਜਾਨ ਹੋ ਆਪੇ ਆਪਣ ਸੰਗ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਰਾਤੇ
1: ਉਮਰੀ ਉਸਤ ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਸ ਕੋਏ
0: ਸਰਬ ਧਰਮ ਹੈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ
1: ਸਗਲ ਕਿਰਿਆ ਮੈਂ ਉੱਤਮ ਕਿਰਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੁਰਮਤ ਮਲ ਹਿਰਿਆ
0: ਸਗਲ ਉਦਮ ਮੈਂ ਉਦਮ ਭਾਲਾ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਸਦਾ
1: ਸਗਲ ਬਾਣੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਕੋ ਜਸ ਨੂੰ ਰਸਨ ਬਖਾਣੀ
0: ਸਗਲ ਥਾਨ ਤੇ ਉਹ ਉੱਤਮ ਥਾਨ ਨਾਨਕ ਜੀ ਘਟ ਬਸੈ ਹਰ ਨਾਮ
1: ਸੁਖ ਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਵ ਨਾਮ ਭਗਜਨਾ ਕਹਿ ਮਨ ਵਿਸਰਾਮ ਅੱਠ ਤਿੰਨ ਸਲੋਕ
0: ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰ ਇਹ ਆਨਿਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲ ਜਿਨ ਕੀ ਆਤਿਸ਼ ਚੀਤ ਰੱਖ ਨਾਨਕ ਨਿਭੀ ਨਾਲ ਸਤ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਮਈਆ ਕੀ ਗੁਣਚੇਤ ਪਰਾਨੀ ਕਵਨ ਮੂਲ ਤੇ ਕਵਨ ਦਸ਼ਟਾਨੀ
0: ਜਿਨ ਤੂੰ ਸਾਧ ਸਵਾਰ ਸਿਗਾਰਿਆ ਗਰਭ ਅਗਨ ਮਹਿ ਜਿਨੈ ਉਬਾਰਿਆ
1: ਬਾਰ ਬਸਤਾ ਤੁਝੇ ਪਿਆਰੈ ਦੂਧ ਪਰ ਜੋਬਨ ਭੋਜਨ ਸੁਖ ਸੂਦ
0: ਬਿਰਧ ਭਇਆ ਉਪਰ ਸਾਖ ਸੈਨ ਮੁਖ ਪਿਆਉ ਬੈਠ ਕਉ ਦੈਨ
1: ਇਹੋ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕੁਛੂ ਨਾ ਬੂਝੈ ਬਖਸ਼ ਦੇਹੋ ਤੋ ਨਾਨਕ ਸੀਜੈ
0: ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਧਾਰ ਉਪਰ ਸੁਖ ਬਸਹਿ ਸੁਤ ਭਰਾਤ ਮੀਤ ਬਨਤਾ ਸੰਘਰਸ ਹੈ
1: ਇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੀਵੇ ਸੀਤਲ ਜਲਾ ਸੁਖਦਾਈ ਪਵਨ ਪਾਵਕ ਅਮੁਲਾ
0: ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭੋਗੈ ਸਭ ਰਸਾ ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਸੰਗ ਸਾਥ ਵਸਾ
1: ਦੀਨੇ ਹਸਤ ਪਾਵ ਕਰਨੇ ਤਰਸਨਾ ਤਿਸੇ ਤਿਆਗ ਅਵਰ ਸੰਗਰਚਨਾ
0: ਐਸੇ ਦੁਖ ਮੂੜ ਅੰਧ ਬਿਆਪੇ ਨਾਨਕ ਕਾਢ ਲੇਹੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ
1: ਆਦ ਅੰਧ ਜੋ ਰਾਖਨ ਹਾ ਤਿਸਿਓ ਪ੍ਰੀਤ ਨ ਕਰੈ ਗਵਾਰ
0: ਜਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਮ ਨਿਧ ਪਾਵੈ ਤਾਂ ਸੋ ਮੂੜਾ ਮਨ ਹਿਲਾਵੈ
1: ਜੋ ਠਾਕਰ ਸਸਦਾ ਹਜੂਰੇ ਤਾਕੋ ਅੰਧਾ ਜਾਨ ਦੂਰੇ
0: ਜਾ ਕੀ ਟਹਿਲ ਪਾਵੈ ਦਰਗੈ ਮਾਨ ਤਿਸਹਿ ਬਸਾਰੈ ਮੁਗਧ ਅਜਾਨ
1: ਸਦਾ ਸਦਾ ਭੂਲਨ ਹਾਰ ਨਾਨਕ ਰਾਖਨ ਹਾਰ ਅਪਾਰ
0: ਰਤਨ ਤਿਆ ਕੌਡੀ ਸੰਗ ਰਚੈ ਸਾਚ ਛੋੜ ਝੂਠ ਸੰਗ ਮਚੈ
1: ਜੋ ਛੜਨਾ ਸੋ ਅਸਤਰ ਕਰਮਾਨ ਹੈ ਜੋ ਹੋਵਨ ਸੋ ਦੂਰ ਪਰਾਨ ਹੈ
0: ਛੋੜ ਜਾਏ ਤਿਸ ਕਾ ਸਰਮ ਕਰੈ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਤਿਸ ਪਰ ਹਾਰੈ
1: ਚੰਦਨ ਲੇ ਪੁਧਾਰੈ ਧੋਏ ਘਰ ਤੋਂ ਪੀਰ ਪ੍ਰਸਮ ਸੰਗ ਹੋਏ
0: ਅੰਧ ਕੂਪ ਮੈਂ ਪਤਤ ਵਿਕਰਾਲ ਨਾਨਕ ਕਾਢ ਲੇਹੋ ਪ੍ਰਭ ਦਇਆਲ
1: ਦੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ ਲੋਕ ਪਚਾਰਾ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ
0: ਬਾਹਰ ਭੇਖ ਅੰਤਰ ਮਲ ਮਾਇਆ ਛਪ ਸਨਾਹੇ ਕਛ ਕਰੈ ਛਪਾਇਆ
1: ਬਾਹਰ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਇਸਨਾਨ ਅੰਤਰ ਵਿਆਪੈ ਲੋ ਸਵਾਨ
0: ਅੰਤਰ ਅਗਨ ਬਾਹਰ ਤਨ ਸੁਹਾ ਗਲ ਪਾਥਰ ਕੈਸੇ ਤਰੈ ਅਥਾਹ
1: ਜਾ ਕੇ ਅੰਤਰ ਵਸੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਨਾਨਕ ਤੇਜਨ ਸਹਿਜ ਸਮਾ
0: ਸੁਣ ਅੰਧਾ ਕੈਸੇ ਮਾਰਗ ਪਾਵੈ ਕਰ ਗਹਿ ਲਿਹੋ ਉੜਨ ਵਿਹਾਵੈ
1: ਕਹਾ ਬੁਜਾਤ ਬੁਜੈ ਡੋਰਾ ਨਿਸਕੀਏ ਤੋ ਸਮਝੇ ਭੋਰਾ
0: ਕਹਾ ਵਿਸ਼ਨ ਪਦ ਗਾਵੈ ਗੁੰਗ ਜਤਨ ਕਰੈ ਤੋ ਪੀਸੁਰ ਭੰਗ
1: ਕਹਾ ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਰ ਭਵਨ ਨਹੀਂ ਹੋਤ ਉਹਾ ਉਸ ਗਵਨ
0: ਕਰਤਾਰ ਕਰੁਣਾ ਮੈਂ ਦੀਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰੈ ਨਾਨਕ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤਰੈ
1: ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਸੋ ਆਵੇ ਨਾ ਚੀਤ ਜੋ ਬਹਿ ਰਾਹੀ ਤਾ ਸੋ ਪ੍ਰੀਤ
0: ਬਲੂਆ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਭੀਤਰ ਵਸੈ ਆਨੰਦ ਕੇਲ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਰਸੈ
1: ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਮਾਨੈ ਮਨੈ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਾਲ ਨਾ ਆਵੈ ਮੂੜੈ ਚੀਤ
0: ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਝੂਠ ਵਿਕਾਰ ਮਹਾ ਲੋਭ ਧਰੋਹ
1: ਇਹੋ ਜੁਗਤ ਬਿਹਾ ਨੇ ਕਈ ਜਨਮ ਨਾਨਕ ਰਾਖ ਲਿਓ ਆਪਨ ਕਰ ਕਰਮ
0: ਠਾ ਕਰ ਤੋਂ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸ ਜਿਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ
1: ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੇਰੇ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੁਗਨੇਰੇ
0: ਕੋਈ ਨ ਜਾਣੈ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤ ਉੱਚੇ ਤੇ ਉੱਚਾ ਭਗਵੰਤ
1: ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰੈ ਸੂਤਰਧਾਰੀ ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸੁਆਗਿਆਕਾਰੀ
0: ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮੈਂ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਨੀ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ
1: ਸੁਖ ਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਵ ਨਾਮ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕਹਿ ਮਨ ਵਿਸਰਾਮ ਅੱਠ ਚਾਰ ਸਲੋਕ
0: ਦੇਨ ਹਾਰ ਪ੍ਰਭ ਛੋੜ ਕਹਿ ਲਾਗੈ ਆਨ ਸੁਆਏ ਨਾਨਕ ਕਹੂ ਨਸੀ ਜਈ ਬਿਨਾਵੈ ਪਤ ਜਾਏ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਦਸ ਵਸਤੂ ਲੈ ਪਾਛੇ ਪਾਵੈ ਇੱਕ ਵਸਤ ਕਾਰਨ ਵੀ ਖੋਟ ਗਵਾਵੈ
0: ਏਕ ਭੀਨਾ ਦੇ ਦਸ ਭੀਹਰ ਲੈ ਤਾਉ ਮੂੜਾ ਕਹੁ ਕਹਾਂ ਕਰੇ
1: ਜਿਸ ਠਾਕਰ ਸੋ ਨਾਹੀ ਚਾਰਾ ਤਾ ਕੋ ਕੀਜੈ ਸਦ ਨਮਸਕਾਰਾ
0: ਜਾ ਕੈ ਮਨ ਲਾਗਾ ਪ੍ਰਭ ਮੀਠਾ ਸਰਬ ਸੂਖ ਤਾਹੂ ਮਨ ਬੂਠਾ
1: ਜਿਸ ਜਨ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਮਨਾਇਆ ਸਰਬ ਥੋਕ ਨਾਨਕ ਤਿਨ पाया।
0: अगणत साहो अपनी दे रास, खात पीत बरत आनंद उलास।
1: अपनी अमान कछ बहुर साले, अज्ञानी मन रोस करे।
0: अपनी प्रति तापी खूवे, बहुर उसका विश्वास न होवे।
1: जिसकी बस सागे राख है, पप की आज्ञा माने मात है।
0: उसते चौगन करे निहाल, नानक साहेब सदा दयाल।
1: अनक पात माया के हे, सर पर होवत जान अनेक।
0: बिर की छाया सो रंग लावे, ओ बिन सह ओ मन पछतावे।
1: ज्योति सह सो चालन हार, लपट रहो ते अंध अंधार।
0: बटाऊ सो जो लावे, नेहे ताको हाथ ना आवे के हे।
1: मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई, कर कृपा नानक आप ले लाई।
0: मिथ्या तन धन कुटम सुबाया, मिथ्या हो मैं ममता माया।
1: मिथ्या राजु मंतन माल, मिथ्या काम क्रोध विकराल।
0: मिथ्या रथ हस्ती अस वस्त्रा, मिथ्या रंग संग माया पे खस्ता।
1: मिथ्या त्रो मोह अभिमान, मिथ्या आपस ऊपर करत गुमान।
0: अस्त्र भगत साध की शरण, नानक जप जप जीवे हर के चरण।
1: मिथ्या शरण पर निंदा सुने, मिथ्या हस पर दरुक हिरे।
0: मिथ्या नेत्र पेखत पर तिर रूपाद, मिथ्या रसना भोजन अनुसवा।
1: मिथ्या चिन्ह पर विकार कुतावे, मिथ्या मन पर लोभ लुभावे।
0: मिथ्या तन ही पर उपकारा, मिथ्या बास लेत विकारा।
1: बिन मुझे मिथ्या सब पै, सफल दे नानक हर हर नाम लै।
0: बिरथी साख्त की आर जा, सच बिना कह होवत सूचा।
1: बिरथा नाम बिना तन अंध, मुखावता कह दुर्गंध।
0: बिन सिमरन दिन रैन, बिरथा बिहाई, मेघ बिना ज्यों खेती जाए।
1: गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम, जो कर प्रते निरार धाम।
0: तन तन ते जन जिह घट बस्यो, हर नाओ नानक ताकै बल बल जाओ।
1: रहत वर कछ अवर कमावत, मानी पीत मखो गंडलावत।
0: जानन हार प्रभु परवीन, बाहर भेख न काहू पीन।
1: और उपदेश है अपना करै, आवत जावत जन मैं मरै।
0: जिसके अंतर बसै निरंकार, तिसकी सीख तरै संसार।
1: जो तुम भाने तिन पर जाता, नानक उंजन चन पराता।
0: करो बेनती पार ब्रह्म, सब जानै अपना किया आपह मानै।
1: आपे आप आप करत नवेरा, किसे दूर जिनावत किसे बुझावत नेरा।
0: उपाव स्यानप सगल ते रहत, सब कछ जानै आत्म की रहत।
1: पावै तिसलै लड़ लाए, थान थन अंतर रहा समाए।
0: सो सेवक जिस कृपा करी, निमख निमख जप नानक हरी।
1: सुख मनि सुख अमृत प्रभ नाम, भग जना कै मन विश्राम। अठ पंज सलोक,
0: काम क्रोध अर लोभ मोह, बिनस जाए अहमेव। नानक प्रशर नागति, कर प्रसाद गुरुदेव। सत नाम श्री वाहे गुरु अष्टपदी।
1: जय प्रसाद छत्ती अमृत खाहे, तिस ठाकुर को रख मन माहे।
0: जय प्रसाद सुगंध तन लावे, तिसको सिमरत परमगत पावे।
1: जय प्रसाद बसे सुख मंदिर, तिसे त्याज सदा मन अंदर।
0: जय प्रसाद ग्रह संग सुख बसना, आठ पहर सिमरो तिस रसना।
1: जय प्रसाद रंग रस भोग, नानक सदा त्याई त्यावन जोग।
0: जय प्रसाद पाठ पटम्बर हंडावे, तिसे त्याग कतब लुभावे।
1: जय प्रसाद सुसे सुई जय, मन अठ पहता का जस गवी जय।
0: जय प्रसाद तुझ सब को मान, मुखता को जस रसन बखान।
1: जय प्रसाद तिरहता धर्म, मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म।
0: प्रभु जी जपत दर गय मान, पावे नानक पथ सेती कर जावे।
1: जय प्रसाद और कंचन देही, लिव लाओ तिस नाम स्नेही।
0: जय प्रसाद तेरा उला रहत, मन सुख पावे हर हर जस कहत।
1: जय प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाकै, मन सन्नी प्रभ ठाकर प्रभता कह।
0: जय प्रसाद तुझ को न पहुंचै, मन सास सास सिमरो प्रभु उचे।
1: जय प्रसाद पाई दुर्लभ देहे, नानक ताकी भगत करे।
0: जय प्रसाद आभूखन पहरी जय, मन तिन सिमरत क्यों आलस की जय।
1: जय प्रसाद असुहस्त असवारी, मन तिस पर को कबू ना बिसारी।
0: जय प्रसाद बाग मिलक तना, राख पुरोय प्रभ अपने मना।
1: जिन तेरी मन बंत बनाई, उठत बैठ सत सहते आई।
0: सहते आजो एक अलख है, इहा उहा नानक तेरी रख है।
1: जय प्रसाद करे पुन बहुदान, मन आठ पहर कर तिसका ध्यान।
0: जय प्रसाद तू आचार बिहारी, तिस प्रभ को सास सास चितारी।
1: जय प्रसाद तेरा सुंदर रूप, सो प्रभ सिमरो सदा अनूप।
0: जय प्रसाद तेरी नीकी जात, सो प्रभ सिमर सदा दिन रात।
1: जय प्रसाद तेरी पत्र है, गुर प्रसाद नानक जस कह।
0: जय प्रसाद सुनै करनाद, जय प्रसाद पेख है बिस्माद।
1: जय प्रसाद बोले अमृत रसना, जय प्रसाद सो सहजे बसना।
0: जय प्रसाद हस्त कर चल है, जय प्रसाद संपूर्ण फल है।
1: जय प्रसाद परम गत पावे, जय प्रसाद सुख सहज समावे।
0: ऐसा प्रभु त्याग अवर कत लागो, गुर प्रसाद नानक मन जागो।
1: जय प्रसाद तू पर संसार, तिस प्रभु को मूल न मनो विसार।
0: जय प्रसाद तेरा प्रताप, रे मन मूड तुता को जाप।
1: जय प्रसाद तेरे कारज पूरे, तिसे जान मन सदा हजूर है।
0: जय प्रसाद तू पावे साच, रे मन मेरे तू ता सुराच।
1: जय प्रसाद सब कीरत होए, नानक जाप जपै जप सोए।
0: आप जपाए जपै सो नाओ, आप गाए सो हर गुण गाओ।
1: प्रभु कृपा ते होए प्रगास, प्रभु दया ते कमल विगास।
0: सब सो प्रसन्न बसै मन सोए, प्रभु दया ते मत उत्तम होए।
1: सर्व निधान प्रभु तेरी माया, आपो कछु ना किन्हू लया।
0: जित जित लावो तित लगै, हर नाथ नानक कै कछु न हाथ।
1: सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना कै मन विश्राम। अठ छे श्लोक।
0: आगम अगाद पार ब्रह्म सोए जो जो कह सुमुक्ता होए सुन मीता नानक बिनवंता साध जना की अचार्ज कथा सत नाम श्री वाहे गुरु अष्टपदी
1: साधक संग मखूजल होत साध संग मल सगली को
0: साधक संग मिटे अभिमान साधक संग प्रगटे सो ज्ञान
1: साधक संग पूजे पवनेरा साध संग सुबहुत नबेरा
0: साधक संग पाए नाम रतन साधक संग कुपर जतन
1: साध की महिमा बरने कौन पुरानी नानक साध की शोभा ब्रह्म है समानी
0: साधक संग अगोचर मिले साधक संग सदा प्रफुल्ल है
1: साधक संग आवे बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा
0: साध संग हो सब की रेन साधक संग मनोहर बैन
1: साधक संग न कतु धावे साध संग अस्तित्व मन पावे
0: साधक संग माया ते भिन्न साध संग नानक प्रभु सो प्रसन्न
1: साध संग दुश्मन सब मीत साधु के संग महापुनी
0: साध संग किसे नहीं बैर साधक संग न बिंगा पैर
1: साधक संग नहीं को मंदा सत्संग जाने परमानंदा
0: साधक संग नहीं होताप साधक संग तजै सा बाप
1: आपे जाने साध वडाई नानक साध प्रभु बनियाई
0: साधक संग न कबहू तावे साधक संग सदा सुख पावे
1: साध संग बस अगोचर लह साधु के संग अजर सह
0: साधक संग बसै थान उचे साधु के संग महल पहुंचे
1: साधक संग दिड़े सब धर्म साधक संग केवल पार ब्रह्म
0: साधक संग पाए नाम निदान नानक साधु कै कुर्बान
1: साधक संग सब कुल उधारे साध संग साजन मीट कुटम निस्तारे
0: साधु कै संग सो धन पावे जिस धन ते सब को बरसावे
1: साध संग धर्म राय करे सेवा साधक संग सुबह सुरदेवा
0: साधु कै संग पाप पलायन साध संग मृत गुण गायन
1: साधक संग सर्व थान गम नानक साधक संग सफल जन्म
0: साधक संग नहीं कछ काल दर्शन भेट होत निहाल
1: साधक संग कुलुकत हरै साधक संग नर पर हरै
0: साधक संग इहां उहां सुहिला साध संग बिछड़त हर मेला
1: जो इच्छा सोई फल पावे साधक संग न बिरथा जावे
0: पार ब्रह्म साध रिद वसै नानक उदरै साध सुन रसै
1: साधक संग सुनो हर नाव साध संग हर के गुण गाओ
0: साधक संग न मन ते बिसरै साध संग सर पर निस्तारै
1: साधक संग लगे प्रभु मीठा साधु कै संग गड़गड़ डीठा
0: साध संग पै आज्ञाकारी साध संगत पई हमारी
1: साधक संग मेटै सब रोग नानक साध भेटै संजोग
0: साध की महिमा भेद न जानै जीता सुने तेता बखियानै
1: साध की उपमा ते गुण ते दूर साध की उपमा रही भरपूर
0: साध की शोभा का नाही अंत साध की शोभा सदा बेअंत
1: साध की शोभा हुई ते ऊंची साध की शोभा मूझ ते मूची
0: साध की शोभा साध बनाई नानक साध प्रा भेद न पाई
1: सुख मनि सुख अमृत पब नाम भगत जना कै मन विश्राम अठ सत श्लोक
0: मन साचा मुख साचा सोए अवर न पेखै एक बिन कोए नानक हे लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए सत नाम श्री वाहे गुरु अष्टपदी
1: दम ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमल अलेप
0: ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख जैसे सूर सर्व को सोख
1: ब्रह्म ज्ञानी कै दिस समान जैसे राज रंग को लागै तुल पवान
0: ब्रह्म ज्ञानी कै तीर जेक ज्यों बसदा को खोदै को चंदन लेप
1: ब्रह्म ज्ञानी का है गुनाव नानक जो पावक का सह स्वभाव
0: ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल न लागै जला
1: ब्रह्म ज्ञानी के मन होए प्रगास जैसे तार ऊपर आकाश
0: ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सत्र समान ब्रह्म ज्ञानी कै नाही बिमान
1: ब्रह्म ज्ञानी उच ते ऊंचा मन अपने है सब ते नीचा
0: ब्रह्म ज्ञानी से जन पय नानक जिन प्रवाप करे
1: ब्रह्म ज्ञानी सगल किरीना आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना
0: ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पया
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दिस अमृत बरसी
0: ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल योग्यता
1: ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान
0: ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश
1: ब्रह्म ज्ञानी कै गरीबी समाहा ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमाहा
0: ब्रह्म ज्ञानी कै नाही धंधा ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा
1: ब्रह्म ज्ञानी कै होए सुफला ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला
0: ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार
1: ब्रह्म ज्ञानी कै कै रंग ब्रह्म ज्ञानी कै बसै प्रभ संग
0: ब्रह्म ज्ञानी कै नाम आधार ब्रह्म ज्ञानी कै नाम परवार
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा सब जगत ब्रह्म ज्ञानी अहबुत त्याग
0: ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी कै घर सदा आनंद
1: ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश
0: ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म कविता ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता
1: ब्रह्म ज्ञानी का होए अचिंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत्र
0: ब्रह्म ज्ञानी जिस करै प्रभाव ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप
1: ब्रह्म ज्ञानी का दस वड़ भागी पाइए ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए
0: ब्रह्म ज्ञानी को खोज महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर
1: ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है ब्रह्म ज्ञानी का सगल मन माह
0: ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश
1: ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाए अधाखर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर
0: ब्रह्म ज्ञानी कीमत कौन बखाने ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने
1: ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार
0: ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का करता ब्रह्म ज्ञानी सब जीव है नहीं मरता
1: ब्रह्म ज्ञानी मुकुत जुगत जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता
0: ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ
1: ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार
0: ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धनी
1: सुख मनी सुख अमृत पव नाम भगत जना के मन विश्राम आठ आठ श्लोक
0: उतार है जो अंतर नाम सर्व मैं पेख है भगवान निमख निमख ठाकुर नमस्कार है नानक हो अपारस सगल निस्तार है सत नाम श्री वाहे गुरु अष्टपति
1: मिथ्या नाही रसना परस मन में पीत निरंजन दर्श
0: पर तेरे रूप ना पेख है नेत्र साध की टहल संत संग हेत
1: न सुने काहु की निंदा सब ते जाने आपस को मंदा
0: गुर प्रसाद बिख्या पर हर है मन की बासना मन ते टर है
1: इंद्री जित पाई दोख से रहत नानक कोट मदे को ऐसा अपरस
0: वैष्णो सोजे सुपर सुपर सन विष्णु की माया ते हुए भिन्न
1: कर्म करत हुए ने कर्म तिस वैष्णो का निर्मल तर्म
0: काहु फल की इच्छा नहीं बाछा है केवल पात कीर्तन संग राचा है
1: मन तन अंतर सिमरन गोपाल सब ऊपर होवत कृपाल
0: आप दृढ़ अवरह नाम जपावे नानक हो वैष्णो परम गत पावे
1: भगवती भगवान भगत का रंग सगल त्याग है दुष्ट का संग
0: मन ते बिनसै सगला भरम कर पूजा सगल पार ब्रह्म
1: साथ संग पापा मल खोवे तिस भगवती की मत उत्तम होवे
0: भगवंत की टहल करे नितनीत मन तन अर्पै विष्णु प्रीत
1: हर के चरण हृदय बसावे नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे
0: सुपंडित जो मन पर बुद्ध है राम नाम आत्म सुध है
1: राम नाम सारस पीवे उस पंडित के उपदेश जग जीवे
0: हर की कथा हृदय बसावे सुपंडित फिर जो न आवे
1: वेद प्राण सिमरत बुझे मूल सुख में जाने स्थूल
0: वरना को दे उपदेश नानक उस पंडित को सदा आदेश
1: बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चौवरना में जपे को नाम
0: जो जो जपे तिसकी गाथ होए साध संग पावे जन पुए
1: कर कृपा अंतर उधारे पशु प्रेत मुक्त पाथर को तारे
0: सर्व रोग औखद नाम कल्याण रूप मंगल गुण गाम
1: कहो जुगत किते ना पाई है धर्म नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म
0: जिस कै मन पार ब्रह्म का निवास तिसका नाम सत रामदास
1: आत्म नाम तिस नदरी आया दास संत भाय तिन पाया
0: सदा नित नित हर जान सो दास दरगह प्रवान
1: अपने दास को आप कृपा करे तिस दास को सब सो जी पर है
0: सगल संग आत्म उदास ऐसी जुगत नानक रामदास
1: की आ गया तुम हितावे जीवन मुक्त सो कहावे
0: ऐसा हरक तैसा सोग सदा अनंत है नहीं बियोग
1: ऐसा स्वर्ण तैसी उसमाटी तैसा अमृत तैसी बिखाटी
0: तैसा मन तैसा अभिमान तैसा रंग तैसा राजान
1: जो वर्ताए साई जुगत नानक ओ परख कहिए जीवन मुक्त
0: पार ब्रह्म के सगले ठाओ जित जित का राखे तैसा तिनाओ
1: आपे कन करावन जोग प्रभावे सोई फन होग
0: पसरे आप हुए अंत रंग लखिन जाहे पार ब्रह्म के रंग
1: जैसी मत दी तैसा प्रगास पार ब्रह्म करता अविनाश
0: सदा सदा सदा दयाल सिमर सिमर नानक भय निहाल
1: सुख मनी सुख अमृत पव नाम भगत जना कै मन विश्राम अठ नौ श्लोक
0: उस्तत करे अनेक जन अंत न पारा वार नानक रचना प्रभ रची बहुविध अनक प्रकार सत नाम श्री वाहे गुरु अष्टपति
1: कई कोट होए पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी
0: कई कोट भय तीर्थ वासी कई कोट मन पर महदासी
1: कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपीसर होते
0: कई कोट आत्म ध्यान धार है कई कोट कब का विचार है
1: कई कोट नवत नाम ते आवै नानक करते का अंत न पावे
0: कई कोट भय अभिमानी कई कोट अंध ज्ञानी
1: कई कोट कृपन कठोर कई कोट अभिग आत्म निकोर
0: कई कोट पर दर्ब कोहिर है कई कोट पर दुख ना कर है
1: कई कोट माया शर्मा है कई कोट परदेश भरमा है
0: जित जित लाभो ते तित लगना नानक करते की जाने करता रचना
1: कई कोट सिज्जति जोगी कई कोट राजे रस भोगी
0: कई कोट पंखी सर्प पाए कई कोट पाथर बिरख निपजाए
1: कई कोट पौन पानी बैसंतर कई कोट देश भूमंडल
0: कई कोट ससिर सूर नखत्र कई कोट देव दानविंद्र सिर छत्र
1: सुमदरी अपने सुतार है नानक जिस जिस पावे तिस तिस निस्तार है
0: कई कोट राजस्ताम सातक कई कोट वेद पुराण सिमर तर शास्त्र
1: कई कोट किए रतन समुंद कई कोट नाना प्रकार जंत
0: कई कोट किए चरजीवे कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थी
1: कई कोट जा किन प्रसाच कई कोट भूत प्रे सुकर मिर्गा
0: सब ते नेरा सब हूते दूर नारक आप लिप्त रहा भरपूर
1: कई कोट पाताल के वासी कई कोट नर्क सुर्ग निवासी
0: कई कोट जन मै जीव मर है कई कोट बहु जूनी फिर है
1: कई कोट बैठती खाए कई कोट खा ले तक पाए
0: कई कोट किए धनवंत कई कोट माया मह चिंत
1: जय जय भाणा तै तै राखे नानक सब किश प्रभ के हाथे
0: कई कोट भय बैरागी राम नाम संग तिन लिव लागी
1: कई कोट प्रभ को खोजन ते आत्म मैं पार ब्रह्म नहंते
0: कई कोट दर्शन प्राप्त आस तिन को मिलियो प्रभ विनाश
1: कई कोट मा गए सत्संग पार ब्रह्म तिन लागा रंग
0: जिनको है आप सो प्रसन्न नानक ते जन सदा धन धन
1: कई कोट खाणी अरखंड कई कोट आकाश ब्रह्मंड
0: कई कोट होए अवतार कई ज्योत कीनो विस्तार
1: कई बार पसरो पसार सदा सदा एक एक अंकार
0: कई कोट कीने बहु भात प्रभ ते होए ब्रह्मा हे समात
1: ताका अंत न जाने कोई आपे आप नानक प्रभ सोए
0: कई कोट पार ब्रह्म के दास तिन होवत आत्म परगास
1: कई कोट तत के बेते सदा निहारे उसको नेत्रे
0: कई कोट नाम रस पीवे अमर भय सद सद ही जीवे
1: कई कोट नाम गुण गावे आत्म रस सहि समावे
0: अपने जन को सास सास समारे नानक कोई परमेश्वर के प्यारे
1: सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना के मन विश्राम अठ दस श्लोक
0: कारण कारण प्रभ एक है दूसर नाही कोए नानक तिस बलिहार नै जल थल महियल सोए सत नाम श्री वाहे गुरु अष्टपदी
1: करन करावन करने जोग जो तिस पावे सोई होग
0: किन मैं थापो थाप नहारा अंत नहीं किछ पारा वारा
1: हुक्मे तार अतर रहा वै हुक्मे उपजै हुक्म समावे
0: हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार हुक्मे अनक रंग प्रकार
1: कर कर देखे अपनी वडियाई।

0: जे जानत आपन आप बचै
1: परमे भूला दह दिस्तावै निमख माहे चार कुंट फिरावै
0: कर कृपा जिस अपनी भगत दे नानक ते जन नाम मिले
1: खिन मह नीच कीट को राज पार ब्रह्म गरीब निवाज
0: जाका दिष्ट कछु न आवै तिस तत्काल दा दस पलटावै
1: जाको अपनी करै बख्शीस ताका लेखा ना गनै जगदीश
0: जियो पिंड सब तिसकी रास घट घट पूर्ण ब्रह्म प्रगास
1: अपनी बनत आप बनाई नानक जीवै देख बडाई
0: इसका बल नाई इस हाथ करम करम सर्व कुनाथ
1: आज्ञाकारी बपरा जियो जो तिस पावै सोई फुन थियो
0: कबहु ऊंच नीच में बसै कबहु शोक हर खरंग हसै
1: कबहु निंद चिंद व्यवहार कबहु उब काश पयाल
0: कबहु बेता ब्रह्म विचार नानक आप मिलावन हार
1: कबहु नृत्य करै बो भांत कबहु सोए रहै दिन रात
0: कबहु महाक्रोध विकराल कबहु सर्व कियो त्रवाल
1: कबहु होए बह बड़ राजा कबहु पे खारी नीच का साजा
0: कबहु अप कीर्त में आवै कबहु भला भला कहावै
1: ज्यों प्रभु राखै तिहि रहै गुर प्रसाद नानक सच कहै
0: कबहु होए पंडित करे बख्यान कबहु मोहन धारी लावै ध्यान
1: कबहु तट तीर्थ स्नान कबहु सिद्ध साधक मुख ज्ञान
0: कबहु कीट हस पतंग होए जिया अनक जोन भरमै भरमिया
1: नाना रूप जो स्वांगी दिखावै ज्यों प्रा भावै तिवै नचावै
0: ज्यों तिस पावै सोई होए नानक दूजा अवर न कोई
1: कबहु साध संगत एहो पावै उस स्थान ते बहुर न आवै
0: अंतर होए ज्ञान प्रगास उस स्थान का नहीं विनाश
1: मन तन नामर ते करंग सदा बसै पार ब्रह्म कै संग
0: ज्यों जल मैं जल आए खटाना त्यों ज्योति संजोत समान
1: मिट गए गवन पाए विश्राम नानक प्रभ कै सद कुर्बान
0: सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विश्राम अठ ग्यारह श्लोक
1: सुखी बसै मसकीनिया आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले सत नाम श्री वाहे गुरु अष्टपति
0: जिसके अंतर राज अभिमान सुनर पाती हो स्वान
1: जो जाने मैं जो बनवंत सो होवत बिष्टा का जंत
0: आपस को कर्मंत कहावै जन्म मरे बो जोन भरमावै
1: धन भूमगा जो करे गुमान सो मूर्ख अंधा अज्ञान
0: कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावै नानक इहा मुक्त आगे सुख पावै
1: धनवंता होए कर गुर बावै तरन समान कछ संग न जावै
0: बहु लश्कर मान को ऊपर करे आसु पल पीतरता का होए बिना
1: सब ते आप जाने बलवंत खिन मैं होए जाए पसमंत
0: किसे ना बदे आप अहंकारी तरम राय तिस करे खुआरी
1: गुर प्रसाद जाका मिटै बिमान सो जान नानक दर गै परवान
0: कोट कर्म करे हो तारै श्रम पावै सगले बिरथारै
1: अनक तपस्या करे अहंकार नरक सुर्ग फिर अवतार
0: अनक यतन करा तुम निद्रवै हर दर गै को कैसे गवै
1: आप सुखो जो भला कहावै तिसह भलाई निकट न आवै
0: सर्व किरिंजा का मन होए कहो नानक ताकी निर्मल सोए
1: जब लग जाने मुझ ते कछ होए तब इसको सुख नाही कोए
0: जावे जाने मैं कुछ करता तब लग गर्भ जोन मैं फिर
1: जब तारे को बैरी मी तब लग निचल नाही चीत
0: जब लग मोह मगन सुमाए तब लग धर्म रह देश जाए
1: प्रभु कृपा ते बंधन टूटै गुर प्रसाद नानक हो छूटै
0: ऐस कटेला कोट तावै तृप्त न आवै माया पाछे पावै
1: अनक भोग बिख्या के करै नह तृप्तावै खप खप मरै
0: बिना संतोख नहीं को राजा स्वप्न मनोत बितै सब काज
1: नाम रंग सर्व सुख होए बड़भागी किसै प्राप्त होए
0: करन करावन आपे आप सदा सदा नानक हर जाव
1: करन करावन करनै हार इसकै हाथ कहां विचार
0: जैसी दिस्त करे तैसा होए आपे आप आप तब सोए
1: जो किछ कीनो सो अपने रंग सब ते दूर सब हो कै संग
0: पूजै देखै करै विवेक आपै एक आपै अनेक
1: मरै न बिनसै आवै न जाए नानक सद ही रहया समाए
0: आप उपदेशै समझै आप आपै रचिया सब कै साथ
1: आप कीनो आपन विस्तार सब कछु उसका ओहो करनै हार
0: उस ते पिन कहो किछ होए थान तनंतर एक सोए
1: अपने चले तब करनै हार कौत करै रंग अपार
0: मन में आप मन अपने माहे नानक कीमत कह न जाए
1: सत सत सत प्रभु स्वामी गुर प्रसाद किने विख्यानी
0: सच सच सच सब की ना कोट मदे किने विरले चीना
1: भला भला भला तेरा रूप अत सुंदर पार अनूप
0: निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी घट घट सुनी स्वर्ण बखानी
1: पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जपै नानक मन प्रीत
0: सुख मनी सुख अमृत पब नाम भगत जना कै मन विश्राम अठ बारह श्लोक
1: संत शरण जो जन परै सो जन उदरन हार संत की निंदा नानका बहर बहर अवतार सत नाम श्री वाहिगुरु अष्टपदी
0: संत के दुखन आरजा कटै संत के दुखन जमते नहीं छुटै
1: संत के दुखन सुख सब जाए संत के दुखन नरक में पाए
0: संत के दुखन मत होए मलीन संत के दुखन सुबाते ही
1: संत के हते को रखे न कोए संत के दुखन थान भ्रष्ट होए
0: संत कृपाल कृपा जे करै नानक संत संग निंदक बीतरै
1: संत के दुखन ते मुख पावै संतन के दुखन कागजों लवै
0: संतन के दुखन सर्व जोन पाए संत के दुखन त्रिक्त जोन करमाए
1: संतन के दुखन तृष्णा में जलै संत के दुखन सब को छलै
0: संत के दुखन ते सब जाए संत के दुखन नीच नीचाए
1: संत दुखी का थाओ को नाहे नानक संत पावै ता ओए भी गत पाहे
0: संत का निंदक महा अतताई संत का निंदक खिंटिक न पाई
1: संत का निंदक महा त्यारा संत का निंदक परमेश्वर मारा
0: संत का निंदक राज तेहीन संत का निंदक दुखी आर दीन
1: संत के निंदक को सर्व रोग संत के निंदक को

आखण जोर चुपै नह जोर, जोर ना मंगण देन ना जोर, जोर ना जीवन मरना जोर, जोर ना राज माल मन सोर।

कर्मखंड की बाणी जोर, तिथे होर ना कोई होर, तिथे जोत महाबल सू, तिन में राम रहया भरपूर।

0: Awakening with Brahma Kumaris. Namaskar. Welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Welcome, Sister Shivani.
1: Om Shanti.
0: Om Shanti and welcome to Being Bliss.
1: Thank you so much.
0: Sister, last episode mein hum baat kar rahe the about victim kaun hai aur
1: master kaun hai.
0: Master kaun hai. अभी आपने जिस चीज को मैं अभी तक मास्टर समझता आ रहा था उसको विक्टिम बोल दिया. अब 360 डिग्रीज का चेंज है मेरी थिंकिंग और आपने जो सिखाया उसमें.
1: विक्टिम मीन्स कौन? स्लेव मीन्स कौन? जो गुलाम है. जो मास्टर है, मालिक है अपने मन का, और एक है जो अपने मन का गुलाम है. जिसका मन अपने कंट्रोल में नहीं है, जो अपने मन को जब चाहे जहां चाहे जिस तरह चलाए वो नहीं चला सकता है, वो गुलाम है. जिसका मन की स्थिति उसके हाथ में नहीं है, वो दूसरों के व्यवहार पे डिपेंडेंट है. और इसीलिए वो सारा दिन अपने पे मास्टर बनने की बजाय, अपने पे रूल करने की बजाय औरों पे रूल करने की कोशिश करता है. सी, वन थिंग इज, अगर आपका व्यवहार मुझे इरिटेट कर रहा है, अभी कोई भी बात आपकी मुझे इरिटेट कर रही है,
0: मैं पेन लेके टिक टिक टिक टिक,
1: चलो ठीक, इतनी छोटी सी चीज है, आप पेन लेके टिक टिक कर रहे हो, कोई ऐसे ऐसे कर रहा होता है, यू नो, क्रैकिंग देयर नकल्स,
0: प्लास्टिक की थैली में सामान निकालते जा रहे, चिप्स खाते जा रहे, मैं पिक्चर देख रहा हूँ.
1: अब ये कितनी छोटी बात है, इनफैक्ट इसको कोई हम बात भी नहीं कह सकते. एक छोटी सी सीन है, कोई ऐसा कर रहा है एंड आई एम गेटिंग डिस्टर्ब्ड. And at that time I say, you irritate me. Right? You irritate me. And then I go to the extent of saying, you are very irritating. We say this, ये हमारी vocabulary है, ये हमारी रोज की भाषा है. ये बहुत irritating है. ये बहुत irritating है. या ये मुझे irritate कर रहा है. Means, कि इसका ये व्यवहार मेरे अंदर चिड़चिड़ापन लेकर आ रहा है. राइट? अब मेरे पास दो ऑप्शंस हैं इस टाइम पर. या तो मैं अपने मन को इसके व्यवहार के प्रभाव से बाहर निकाल लूं. मतलब यहां आपका एक्शन, यहां इरिटेशन. ठीक है, दो चीजें हो रही हैं. ये इरिटेशन मुझे पसंद नहीं आ रही है, तो मैं चाहती हूं मेरा मन वापस शांत हो जाए. तो एक ऑप्शन ये है कि मैं अपने मन को कहूं, हे मन, क्या प्रॉब्लम है, इतनी सी बात पे इरिटेटेड? वो कर रहे हैं, तुम अपना आराम से बैठो प्यार से. ये एक ऑप्शन कि अपने मन को इंस्ट्रक्शन देना. दूसरा ऑप्शन, आप प्लीज आराम से बैठेंगे ताकि मैं शांत हो जाऊं. तो दो लोग हैं जिनको मैं इंस्ट्रक्शन दे सकती हूं अपने मन की स्थिति को ठीक करने के लिए. या तो अपने मन को इंस्ट्रक्शन दे दूं कि शांत हो जाओ, या आपको इंस्ट्रक्शन दे दूं कि आप ठीक हो जाओ. आप ठीक हो जाओगे तो मैं शांत हो जाऊंगी. मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं अपने मन को इंस्ट्रक्शन दे सकती हूँ. क्यों? क्योंकि मेरा मन मेरा कहना नहीं मानता है.
0: मैंने सोचा भी नहीं ऐसा.
1: मैंने सोचा भी नहीं
0: ऐसा. मैं अपने आप को बोलूं, मैंने तो ये नहीं सोचा. मुझे लग रहा है ये माँ बेटा ले आए हैं चिप्स खरीद के इंटरवल में, खर खर खर खर खर खर, अच्छा सीन चल रहा है मूवी में, और वो कचर पचर खाते भी जा रहे हैं.
1: वी आर नॉट सेइंग कि वो जो कर रहे हैं वो राइट है या रॉन्ग है. अगर कोई कर रहा है ऐसा कुछ भी, या जैसे कई बार हम प्रोग्राम्स करते हैं या मूवी में है, तो किसी का मोबाइल बज जाता है. अभी वी कैन से, इट्स वेरी इजी टू से, इट्स वेरी डिस्टर्बिंग, मोबाइल नहीं बजना चाहिए. ओके, राइट, मोबाइल एक साइलेंट प्लेस पे, या आप पूजा में हैं, मेडिटेशन में हैं, मंदिर में हैं, थिएटर परफॉर्मेंस देख रहे हैं, मोबाइल नहीं बजे. ओके, लेकिन बजा एंड आई गॉट इरिटेटेड. अब दो ऑप्शन है ना, या तो अपने मन को ठीक कर दूं या उनको ठीक कर दूं. एंड रिजल्ट क्या चाहिए? मन शांत हो जाए. दिस वी ऑलवेज नीड टू रिमेम्बर, व्हाट इज द एंड रिजल्ट बिहाइंड एवरीथिंग. आई वांट पीस एंड हैप्पीनेस.
0: आई वांट पीस एंड
1: हैप्पीनेस मींस आई वांट माय माइंड टू बी काम. अब जैसे ही आपने कुछ ऐसा किया जिससे मेरा मन जो एकदम अच्छा शांत चल रहा था वो ऐसे ऐसे होने लग गया, क्यों, क्या, कैसे, ऐसे क्यों किया, ऐसे क्यों नहीं किया,
0: बच्चे को सिखाते नहीं है, ये नहीं है,
1: हाँ, ये सब चीजें, ये मेरी थॉट्स चलने शुरू हुई इन रिस्पॉन्स टू
0: कि थिएटर वाले अंदर क्यों लाने देते हैं खाने की चीजें.
1: राइट, कितनी सारी थॉट्स. सी, ये थॉट्स किसने क्रिएट की? मैंने क्रिएट की इन रिस्पॉन्स टू आपका वो प्लास्टिक की आवाज क्रिएट करना. आपने प्लास्टिक की आवाज की, लेकिन थॉट्स किसने क्रिएट की? वो मैंने की. व्हाट इज द इरिटेशन? योर दिस इज वेरी ब्यूटिफुल. लेट अस चेक, व्हाट इज द इरिटेशन? द प्लास्टिक नॉइज और द थॉट्स विच आई क्रिएट इन रिस्पॉन्स टू दैट प्लास्टिक नॉइज.
0: मैं तो ऐसा कहूंगा कि क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट चिप चिप चिप चिप चिप चिप, मुझे वो चीज, मुझे ये थॉट्स क्रिएट मुझ में वो कर रहे हैं.
1: वो
0: मैं नहीं कर रहा हूँ.
1: एक प्लास्टिक का पैकेट, एक बॉल पेन का टिक टिक,
0: डिस्टर्बेंस इज क्रिएटिंग सच थॉट्स इन मी.
1: दैट डिस्टर्बेंस इज क्रिएटिंग सच थॉट्स इन मी. थॉट कहाँ क्रिएट होती है?
0: मुझ में क्रिएट हो रही है ना उसके रिलेटेड.
1: यहाँ क्रिएट हो रही है ना?
0: हाँ, मेरे मन,
1: मेरा मन कहाँ पे? यहाँ. थॉट क्रिएट हो रही है यहाँ. प्लास्टिक बज रहा है वहाँ. बॉल पेन टिक टिक हो रहा है वहाँ. मोबाइल बज रहा है वहाँ. थॉट क्रिएट हो रही है यहाँ. किसने क्रिएट की?
0: इस सिचुएशन ने, इस परिस्थिति ने.
1: बट उस बॉल पेन
0: के बिहेवियर ने,
1: इनके बिहेवियर यहाँ है. आपका बिहेवियर यहाँ है.
0: बाहर का बिहेवियर मेरे अंदर वाले को डिस्टर्ब कर रहा है ना?
1: बाहर का बिहेवियर यहाँ है ना? अभी आप कैसा भी बिहेव कर रहे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपका बिहेवियर यहाँ है. लेट्स से आपका बिहेवियर बिल्कुल गलत है, ये भी हम बोलते हैं अभी एक मिनट के लिए कि आपका बिहेवियर कंप्लीटली रॉन्ग है, लेकिन यहाँ है. आपके बिहेवियर को देखकर मैं थॉट्स क्रिएट करती हूँ. आपने अभी कहा वो प्लास्टिक चिरचिर चिरचिर मेरे अंदर वो थॉट्स क्रिएट करता है. वो प्लास्टिक मेरे अंदर थॉट्स क्रिएट करता है. यहाँ वो यहाँ घुसकर थॉट क्रिएट करेगा.
0: उसकी वजह से हो रहा है.
1: उसकी वजह से हो रहा है, लेकिन क्रिएट कौन कर रहा है?
0: कोई दुनिया में चुनता है कि इरिटेशन की? आपने बोला कि आई क्रिएट, आई चूज, आई एम थिंकिंग.
1: आस्क सेल्फ एंड लेट्स चेक इट इमीडिएटली. 100 लोग बैठे हैं आसपास इस मूवी थिएटर में. बीच में सेंटर में कोई फोन बजाए या प्लास्टिक आवाज आई, सब 100 लोग रिस्पॉन्ड करेंगे.
0: कोई बुड़बुड़ करके करेगा, कोई जोर से करेगा, कोई मनी में करेगा, कोई ये चाहेगा यार कोई तो उसको बोले, मैं तो नहीं बोल सकता, मुझमें हिम्मत नहीं है.
1: राइट.
0: तो
1: अलग अलग थॉट्स ना. तो वो है एक प्लास्टिक, हर एक के मन में अलग अलग थॉट्स क्रिएट किया.
0: जी.
1: किसने क्रिएट किया अलग अलग मन में थॉट?
0: सब अलग अलग आदमी ने.
1: क्रिएटर कौन है वो फाइनल?
0: मैं क्रिएटर हूँ.
1: प्लास्टिक
0: मुझमें क्रिएट हो रही है.
1: ये पक्का?
0: ये नहीं ना कि वो प्लास्टिक और इस क्रिएशन से मैं दुखी हूँ.
1: वो भी कोई बात नहीं. इम्पोर्टेंट ये बात जितनी छोटी लगती है ये उतनी छोटी नहीं है कि ये मैं क्रिएट कर रहा हूँ. जो हमने कहा पहले कि वो प्लास्टिक की चूर चूर मेरे अंदर वो थॉट क्रिएट कर रही है. वी वर सेइंग दैट इज क्रिएटिंग दिस एंड दैट्स व्हाई वी सेड दैट इज इरिटेटिंग. That is irritating.
0: That person is also irritating.
1: That person is also irritating. Because that person's behavior caused me to create this. Let us at least now remember, चाहे वो एक छोटा सा प्लास्टिक की आवाज है, चाहे वो जीवन की एक बहुत बड़ी परिस्थिति है, इक्वेशन सेम होगी. एक चीज हमें कंप्लीटली हमेशा ये याद रखना पड़ेगा, प्रॉब्लम या चैलेंज जो भी जीवन में आता है, वो उसका साइज कुछ भी हो, इक्वेशन सेम रहेगा हमेशा. जैसे मैथ्स में हमें इक्वेशन सिखाते थे ना एग्जाम में जाने से पहले, प्रॉब्लम थोड़ी पता होती थी कौन सी आएगी एग्जाम में, लेकिन इक्वेशन सही हो गई तो प्रॉब्लम कोई भी आए. राइट इक्वेशन, ये इक्वेशन को अपनी लाइफ में पहले फिक्स करना है. उनका व्यवहार, उनका वो पेन टिक टिक करना, उनका लेट आना, उनका झूठ बोलना, उनका इनसिंसियर होना, उनका मुझे धोखा दे देना, उनका कुछ भी कर देना, वो बाहर है, वो यहां है. यहां तक सीमित है. कोई मुझे फाइनेंशियली धोखा दे सकता है, कोई मुझे फिजिकली भी मार सकता है, कोई मेरे पास सब कुछ जो है वो सारा कुछ नुकसान कर सकता है, लेकिन उस छोटी सी बात में या बड़ी से बड़ी बात में मैं कैसे सोचूंगा, क्या सोचूंगा, कितना सोचूंगा. यू नो लाइक इस केस में भी आपने कहा प्लास्टिक क्यों लाए, बच्चे को पेरेंट ने सिखाया नहीं, थिएटर वाले ने अंदर लाने क्यों दिया, रूल. सी दीज आर डिफरेंट काइंड ऑफ.
0: 10 सेकंड पहले एक चिड़िया जरूर से बोली, उसके साथ एक कौवा बोला जब आप बात कर रही थी, तब मेरी आंख भी वहां नहीं गई। वो तो एक्सेप्टेड था ना,
1: एक्सेप्ट
0: क्योंकि हम जंगल में हैं,
1: राइट।
0: चिड़िया बोलेगी, कौवा भी बोलेगा, नेचुरल नॉइज आएगी,
1: राइट।
0: तो मैं वहां थोड़ी बोलूंगा ये चिड़िया क्यों बोली,
1: एक्सेप्टेड है। लेकिन थिएटर में कोई प्लास्टिक की आवाज करे, नॉट एक्सेप्टेड।
0: अभी आप इंटरवल में खाओ, बाहर खा के आओ।
1: हाँ, ये भी है ना, बाहर खाओ, ये नहीं मालूम आपको। तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस हम किसको दे रहे हैं?
0: अपने आप को, अपने मन मन में दूसरे को दे रहे हैं।
1: दूसरे को दे रहे हैं, और दूसरे को वो इंस्ट्रक्शन देते हुए हम क्या कह रहे हैं? यू आर द कॉज ऑफ माई पेन।
0: करेक्ट।
1: योर वर्ड, योर बिहेवियर, योर एक्ट is causing me pain. I want happiness in life. Please change. ये equation हमने बना ली जीवन की। आपका व्यवहार मुझे दर्द देता है, मुझे जीवन में सुख शांति खुशी चाहिए, प्लीज आप बदल जाइए। प्लीज चेंज। सारा दिन जीवन में कर क्या रहे हैं?
0: यही,
1: औरों को बदलना, औरों को बदलना, औरों को बदलना।
0: मेरी गाड़ी का दरवाजा जोर से मत मारो, मुझे दर्द होता है।
1: वो भी ठीक है, अगर आप गाड़ी में हैं, किसी ने जोर से गाड़ी का दरवाजा बंद किया, आपको बोलना है,
0: बट इरिटेटेड नहीं होना है। ये नहीं बोलना है कि इसको अकल नहीं है, गाड़ी में कभी बैठा नहीं, क्यों बिठाया, क्यों लिफ्ट दिया इसको, लिफ्ट मांग के जोर से दरवाजा बंद करते। और शीशा उस जमाने में पुराने, अब तो वो है बटन, वो शीशा ऐसे से खुला करते थे, ऐसे नहीं होता था, तो शीशा भी उतर के मुझे वापस चढ़ाना पड़ता था,
1: वो भी इरिटेशन।
0: देखो
1: सी, एंड फिर ये सारा कुछ सोचने के बाद सोच लिया,
0: वो भी तो लिफ्ट दूं।
1: नहीं नहीं, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि सोच लिया, ये सारी थॉट्स क्रिएट कर ली, मन अशांत हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं।
0: अब ब्लेम तो उसको ही करूंगा जिसने
1: ब्लेम किया। उसको किया,
0: उसी ने मेरी खिड़की खुली रखी, उसी ने मेरे दरवाजे को जोर से मारा, कर्टेसी नहीं चाहिए।
1: नहीं नहीं, परफेक्ट, सी ऑल दीज लाइन्स आर सो ब्यूटिफुल। उसने लिफ्ट मांगी, उसने खिड़की खुली रखी, उसने दरवाजा बंद किया जोर से,
0: गंदे चप्पल जूते लेके मेरी मिट्टी भी डाली मेरी गाड़ी में,
1: मेरी गाड़ी में मिट्टी भी डाली, ये सब कुछ उसने किया,
0: और सिगरेट भी पीने जा रहा था जब मैंने डांट दिया।
1: ओके, तो ये सारा कुछ उसने किया, सो वी आर गोइंग टू होल्ड हिम रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज फोर थिंग्स। लिफ्ट मांगी, गाड़ी खिड़की खुली रख दी, दरवाजा जोर से स्लैम कर दिया, मिट्टी गाड़ी में भाग गई, सिगरेट भी गाड़ी में पी ली, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज फाइव थिंग्स? ही इज रिस्पॉन्सिबल। मैंने क्या क्या सोचा वो सब देखने के बाद, वो हु इज रिस्पॉन्सिबल?
0: मैं तो सोचने पे मजबूर हुआ ना।
1: मजबूर मतलब, मजबूर कौन होता है? जो गुलाम होता है।
0: प्रैक्टिकल में देखो आप,
1: प्रैक्टिकल में
0: आप यहाँ बैठे हैं,
1: हाँ,
0: धूप लग रही है,
1: राइट,
0: तो आप बोले यार बहुत धूप लग रही है,
1: परफेक्ट,
0: और छांव में जाओगे बोलेंगे कितना ठंडा, अच्छा है,
1: परफेक्ट
0: बोलेंगे। इसी तरह मुझे वो सारा गाड़ी वाला जो हुआ, मैं बोलूंगा सब कुछ बुरा लगा।
1: अब इतनी देर में जब आप इनके बारे में सोच रहे हैं जो गाड़ी से उतर के चले गए हैं, ये जीवन की छोटी छोटी बातें हैं, उतनी देर में
0: से उतर के चले नहीं गए, जाते जाते ढेर सारे प्रॉब्लम छोड़ के गए।
1: प्रॉब्लम छोड़ गए ना, खिड़की खुली रख दी, गाड़ी गंदी हो गई, सिगरेट की भी स्मेल आ रही है, दरवाजा भी हो सकता है थोड़ा सा खराब हो गया, वो सारी प्रॉब्लम्स वो देके गए हैं मुझे, चैलेंजेस। अब आप उसके बारे में सोच रहे हैं और ऐसी ऐसी वाली बातें सोच रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, 5 मिनट बीत गए, आप इरिटेशन क्रिएट हो रही है। उतनी देर में आपको एक फोन आ गया और वो फोन कोई और थोड़ी बड़ी बात आ गई, शायद आपके बिजनेस में, आपके स्टॉक मार्केट में, आपके कहीं और, या कुछ भी ऐसी बात कि कहीं और थोड़ा कोई बड़ी बात आ गई, ऊपर नीचे हो गया है। अब आपको वो व्यक्ति नहीं याद आएगा ना?
0: नहीं, उससे बड़ी चीज याद आएगी।
1: अब वो बात गई,
0: वो गई,
1: अब वो थॉट गई। अगर वो व्यक्ति क्रिएट कर रहा था, इट वुड बी देयर। हुआ क्या, उस व्यक्ति के व्यवहार को लेकर एज अ स्टिम्युलस मैंने ये थॉट्स क्रिएट की। जैसे ही मेरे पास कोई और स्टिम्युलस आ गया, वो थॉट फिनिश्ड, अब ये नेक्स्ट थॉट शुरू हो गए। अब सपोज स्टॉक मार्केट में मेरा कुछ बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, अब मैं उसके बारे में चिंता क्रिएट करने लग गया, एंड देन आई सेड इट्स बिकॉज ऑफ टुडे स्टॉक मार्केट, इट्स बिकॉज ऑफ ऑल दिस फ्लक्चुएशन हैपनिंग इन द फाइनेंशियल सेक्टर, एंड आई केप थिंकिंग, एंड मैंने कहा हु इज रिस्पॉन्सिबल? द मार्केट। मार्केट में फ्लक्चुएशन होती है, लोगों का ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन, सब में फ्लक्चुएशन होती है, ये सब हो रहा है। उतनी देर में आपके पास एक और फोन आता है कि सपोज परिवार में, फैमिली में किसी के साथ थोड़ा कुछ हो गया, अब स्टॉक मार्केट कुछ असर नहीं कर रही मेरे ऊपर, अब वो बात भूल गई, वो थॉट गई, बात बड़ी थी लेकिन अब उससे एक बड़ी बात आई, अब उस बात को लिया, उस बारे में सोचना शुरू कर दिया। लेकिन अब होगा क्या, जब वो थोड़ी छोटी वाली प्रॉब्लम थी, ये तो कितनी छोटी बातें अभी उसके सामने, गाड़ी बंद नहीं हुई, मिट्टी आ गई, ये कितनी छोटी बात, फिर उससे बड़ी बात मार्केट क्रैश, फिर उससे बड़ी बात कि परिवार में किसी के साथ कुछ हो गया। लेकिन जब वो छोटी वाली बात थी, उसमें इस तरह के थॉट्स क्रिएट करते करते मैंने अपनी स्थिति को क्या कर दिया था,
0: सब हिला दिया था,
1: हिला दिया था ना, मैं टर्बुलेंट हो गया, डिस्टर्ब हो गया, इरिटेट हो गया। ऐसी स्थिति में जब बड़ी बात आई, तो उस बड़ी बात में मैं अब कैसे थॉट्स क्रिएट करूंगा, स्टेबिलिटी
0: नहीं, फिर उस लेवल से शुरू होगा वो तो।
1: यस,
0: ऑलरेडी अगर मैं 60 पहुंच गया हूँ,
1: right.
0: वो मेरा 1-0 से शुरू होगा,
1: एब्सोल्युटली
0: 61-62 शुरू होगा,
1: एब्सोल्युटली
0: 0-10 नहीं होगा,
1: नहीं होगा, क्योंकि मैं
0: ऑलरेडी 75 आना है तो 60+75 होगा।
1: मेरी स्थिति इरिटेशन वाली थी, बड़ी बात आई, अब मेरी स्थिति क्या हो जाएगी, और ज्यादा टर्बुलेंट, एंड आई विल बी लाइक, फियर भी क्रिएट हो गया कि मार्केट क्रैश हो गई, एप्रिहेंशन, एंग्जाइटी ऑफ द फ्यूचर, ये सब क्रिएट हो रहा है। उतनी देर में एक और फोन आया कि फैमिली में कुछ हुआ है, अब थॉट्स किस क्वालिटी के क्रिएट होंगे,
0: ये भी मुसीबत, वो भी मुसीबत, ये भी हो गया, एक
1: Now
0: और प्रॉब्लम,
1: गो इवन मोर टर्बुलेंट बिकॉज आई एम ऑलरेडी टर्बुलेंट। अगर वो जो बड़ी वाली बात थी, लेट्स से ये व्यक्ति लिफ्ट ना लेता, मार्केट की न्यूज नहीं आती और आप आराम से गाड़ी में ड्राइव करके जा रहे थे, और उस टाइम आपको सीधा पहले ये फोन आए
0: सिर्फ कि
1: फैमिली में कुछ हुआ है, यू आर इन अ स्ट्रॉन्गर स्टेट ऑफ माइंड टू फेस दैट सिचुएशन। तब भी आपको चिंता होगी, डर लगेगा या जो भी वो थॉट्स आएंगे, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होगा उसका, क्योंकि यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेबल एंड देन क्रिएटिंग लिटिल टर्बुलेंस। लेकिन जब छोटी बात में टर्बुलेंस, फिर बड़ी बात में ज्यादा टर्बुलेंस, तो जब तक बड़ी बात आ गई, वी क्रिएटेड chaos. Why today we said that there is chaos in our mind? क्योंकि हमने छोटी छोटी बातें जो कि रोज आती है, बड़ी बड़ी बातें, ये जो चैलेंजेस बड़े कि फैमिली में कोई हेल्थ, बिजनेस में कोई क्राइसिस, रिश्तों में कोई क्राइसिस, ये कभी कभी आता है जीवन में सिर्फ, ये हर एक के जीवन में कितनी बार आ जाएगा, ये 2 बार।
0: लेकिन आपसे जो मैं बात कर रहा हूँ और आप मुझे जवाब दे रहे हैं, इसका कोई दवाई, जैसे कोई बीमारी की होती है या किसी चीज का सॉल्यूशन होता है, जैसे आप मैथमेटिक्स का भी एग्जांपल देते हैं, इसमें कोई तरीका नहीं है जीने का,
1: सिंपल तरीका ना, अब नेक्स्ट टाइम कोई आपकी गाड़ी में फिर लिफ्ट लेगा, हम बड़ी बातों को नहीं फेस करेंगे अभी, दिस इज अगेन अनदर इक्वेशन, डोंट ट्राई एंड चेंज योर सेल्फ इन बिग सिचुएशंस। हम एक्सपेक्ट करें कि मेरे सामने कोई बड़ी बात आ जाए एंड मैं स्टेबल रहूं, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन राइट नाउ। लेट अस ओनली
0: शुरुआत कैसे करें,
1: छोटी छोटी बातों में, एंड छोटी बातें में
0: सब, जो चिप्स वाली बात, चिबड़े वाली बात, वो कुरकुर
1: वाली बात, फिर वो गाड़ी में कोई बैठा और खिड़की खुली रखती या जोर से दरवाजा,
0: भाग के दूसरी को सीट ले लें, भाग जाए, क्या करें,
1: वही बैठे, इनका व्यवहार सही नहीं है, मेरे लिए सही नहीं है, राइट, लेकिन मैं इनको नहीं कंट्रोल कर सकता। अब उन्होंने जिस तरह से गाड़ी बंद करनी है कर दी, हे मन, मैं उनको नहीं कंट्रोल कर सकता, वो मेरी बात नहीं मानते हैं, तुम तो मेरी बात मानो। शिफ्टिंग फ्रॉम विक्टिम, स्लेव, स्लेव मतलब जिसको कहना मानना पड़ता है, एंड मास्टर मतलब जो कहना मनवाता है, अपने मन के मास्टर, रूलर, विच मीन्स हम जब मन को कहेंगे बस इसके ऊपर दो थॉट्स क्रिएट कर लेना, दैट्स ऑल दैट वाज नीडेड, 50 थॉट नहीं चाहिए इतनी सी बात के लिए, बस कर दिया ना उन्होंने, वो ठीक है, उनको नहीं आता था कैसे करना है ना, नेक्स्ट टाइम आई विल चूज।
0: चिवड़ा चिप्स जब खत्म हो जाएंगे आप ही, आवाज बंद हो जाएगी,
1: नहीं भी आएंगे तो वो मेरे कंट्रोल में नहीं है।
0: जब जोर से चिड़िया बोली कौवा भी बोला,
1: यस, तो एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट, क्यों एक्सेप्ट, बिकॉज आई एम वेरी वेरी क्लियर कि वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, दिस क्लैरिटी, ये नॉलेज, दे आर नॉट इन माय कंट्रोल, ये इक्वेशन फिक्स्ड, आई एम द क्रिएटर ऑफ माय थॉट। हाँ, ये देखेंगे कि वो अपने आप क्यों आ जाती है थॉट, जैसे आपने कहा ना, मैं चूज थोड़ी कर रहा हूं गंदी वाली थॉट क्रिएट करनी, अगर मैं चूज करता तो अच्छी वाली करता, कितनी गंदी करनी है, इतनी गंदी कैसे कर दी है, मैंने चूज थोड़ी किया, चूज कैसे करना है, दैट्स अ सेकंड पार्ट. फर्स्ट इम्पोर्टेंट इज ओनली हु इज द क्रिएटर ऑफ माय थॉट, एंड फॉर दैट वेरी इम्पोर्टेंट, नेवर एवर आर नाउ वी गोइंग टू से दे आर इरिटेटिंग, दे इरिटेट मी. नो, गेट इरिटेटेड, बट नाउ द लैंग्वेज विल हैव टू बी आई क्रिएट इरिटेशन इन रिस्पॉन्स टू देयर बिहेवियर. सो ये अब इंटरेस्टिंग गेम हमें सारा दिन खेलने हैं कि सिचुएशन, लोग, मेरा मन, दो एंटिटीज है.
0: ये अच्छा आप कह रहे हैं, गेम
1: गेम है ना, दो चीजें हैं.
0: मेरे कान में दर्द होता है वो देखिए, टिक टिक कोई पेन मारता रहता है.
1: चलो इतनी सिंपल भी चीज है कि वो ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो आप उनको क्या बोलेंगे, प्लीज ऐसा मत कीजिए. हम बोलते हैं ना किसी को, प्लीज डोंट डिस्टर्ब, सपोज, राइट राइट. नाउ आई हैव टू ऑप्शंस, ईदर आई टेल यू प्लीज डोंट डिस्टर्ब, और आई टेल माई माइंड प्लीज डोंट डिस्टर्ब.
0: इसको एक बार बोलूंगा, हाँ. पांच मिनट के बाद फिर शुरू कर देगा, या पैर ऐसे ऐसे ऐसे हिलाता रहेगा, ताकि कुर्सी ऐसे ऐसे हिलाता रहेगा, मेरी भी कुर्सी.
1: इम्पोर्टेंट वो नहीं है, इम्पोर्टेंट है दुनिया में कितने लोगों को बोलेंगे. ये सब जीवन की छोटी छोटी चीजें हैं. व्हाट अबाउट द बिग थिंग्स देन? लोग अपने अनुसार जीवन जिएंगे. आप सिर्फ ये दो ऑप्शंस को हर समय अब सारा दिन आज रखना है. ये होमवर्क है, ये होमवर्क है. सामने कोई ऐसा कर रहा है, अब छोटी चीजों में करना है ये होमवर्क, बड़ी चीज में नहीं करना कि किसी ने कोई मेरे साथ गलत किया, धोखा दिया. फॉरगेट बिग थिंग्स टुडे. एकदम छोटी छोटी बातें, किसी का फोन बज रहा है, कोई ट्रैफिक में रॉन्ग साइड से ओवरटेक कर रहा है, कोई ओवर स्पीड कर रहा है, कोई मेरी गाड़ी से बहुत नजदीक जा रहा है, कोई लेन टच कर रहा है, कोई लेट आ रहा है.
0: छोड़ दीजिए, कोई खाने पे मुझे बुलाता है तो समझो चार औरतें खाना खिला रही हैं, जबरदस्ती की मेरी प्लेट में खाना वही सब्जी डाल देते जो पसंद नहीं.
1: ठीक है,
0: अब उसको कैसे बोलो कि भाई मत डाल, पूछ तो लो.
1: हाँ, कैसे बोल सकते हैं?
0: एक बार बोला, हाँ. नहीं नहीं नहीं नहीं, आपको खाना है बहुत मजे की, तुम्हारे लिए मजे की होगी भाई.
1: हाँ.
0: हाँ, मुझे चावल खाने, रोटी दो, अब घी वाली खा लो एक रोटी.
1: ठीक है,
0: अब ये इरिटेटिंग पॉइंट्स लगते हैं मुझे. आप पता नहीं क्या आपको कैसे लगता है कि इन चीजों को पूरा दिन बर्दाश्त करता रहूं. बट मैं बोल रहा हूँ कि इसका कोई सोल्यूशन मुझमें है.
1: नो नो, वी हैव टू, वेरी फाइन, व्हाट्स द सोल्यूशन? लेट्स आस्क मी, आई आस्क माई सेल्फ, व्हाट्स द सोल्यूशन?
0: सोल्यूशन ये है कि चुप रहो, बर्दाश्त करते रहो.
1: नो, ये सोल्यूशन नहीं है कि चुप रहो. सोल्यूशन है पहले अपने मन को चुप कराओ. लेट्स से आप यहाँ हैं, ओके, एंड आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसको देखकर मैं इरिटेशन क्रिएट कर रही हूँ. सो लेट मी, चलो फर्स्ट ट्राई एंड कंट्रोल यू
0: जी,
1: इवन इफ आई फील दिस इज
0: ईजियर. चलिए, पहले एपिसोड्स में मैं बोलता जा रहा था, आपको इरिटेट कर रहा था, मैं अपने ओल्ड बिलीफ में.
1: मैंने नहीं कहा कि आप इरिटेट हो रहे थे. हाँ, तो आप इरिटेट नहीं कर रहे थे,
0: और आप इतना अच्छा जवाब दे रहे थे प्यार से, और मैं चिड़चिड़ के बोल रहा ऐसे कैसे होता है, ऐसे कैसे होता है. मैं पहले तीन एपिसोड्स में मैं चिल्ला तो रहा था.
1: अब
0: तब आप कैसे शांत थे ये मुझे समझाइए, ताकि मैं भी सीख लूं आपसे.
1: Because
0: आपने वही प्यार से ऐसे ऐसे ऐसे मीठा मीठा जवाब दिया, आपकी ना आवाज उठती है ना जीजी होती है, ये सब क्या जादू है ये?
1: क्योंकि आप जो कर रहे थे वो बिल्कुल सही था.
0: जो मैं चिड़चिड़ कर रहा था, आपको टोक रहा था, बीच में डिस्टर्ब कर रहा था, मैं बात नहीं मान रहा था आपकी, मेरी आपकी बातें समझ में नहीं आ रही थी, यहाँ तक मैंने बोल दिया कि आपकी बातें प्रैक्टिकल नहीं है, तब भी आप शांत रहे.
1: जब हम स्वीकार करते हैं कि जो दूसरा कर रहा है वो अपने दृष्टिकोण से सही कर रहा है, वो भी चलो गहरी बात, वो हम धीरे देखेंगे बाद में. पहले हम सिचुएशन में देख लें. सपोज चलो आप ये सिचुएशन कहो कि लेट्स से आप बहुत प्रश्न पूछ रहे हैं, बार बार कट कर रहे हैं.
0: नहीं, बट आपकी बात करते करते बीच में भी बोल रहा
1: ठीक
0: था.
1: ठीक है, चलो सिचुएशन, वन सिचुएशन. तो दो ऑप्शन है मेरे पास, दो ऑप्शन है. या तो एक, आपको कंट्रोल करो. आपको कंट्रोल करो मीन्स आपको बोलो, डोंट टॉक लाइक दिस टू मी,
0: डोंट डिस्टर्ब मी व्हाइल आई एम स्पीकिंग,
1: डोंट डिस्टर्ब,
0: ताकि मेरा फ्लो टूटता है. आप इतना तो बोल सकते थे, वो भी नहीं बोला आपने.
1: आप पूछ रहे हैं, इंटरजेक्ट कर रहे हैं. दो ऑप्शन, एक तो पहले चेकिंग कि क्या मेरा मन अशांत हो रहा है. अगर मन अशांत नहीं हो रहा तो एवरीथिंग इज परफेक्ट. अब दूसरी ऑप्शन, अगर मन अशांत हो रहा है तो मैं आपको बोलूं प्लीज डोंट डिस्टर्ब, फिर आप जब वो करना बंद करें मेरा मन ठीक हो जाए.
0: लेकिन मैं जब लोग मेरी प्लेट में चावल या रोटी जबरदस्ती डाल जाते हैं और हट जाते हैं, और मैं बोल देता हूँ कि भाई आप जबरदस्ती क्यों खिला रहे हो, चिढ़ जाता हूँ, उसके बाद मुझे पता चलता है कि मेरा मन अशांत हो रहा है, रोटी से पहले पता चले तो मैं नहीं कुछ नहीं बोलू ना,
1: राइट। अब इसका मतलब नहीं, बट इसका मतलब
0: ये भी दो दिन बाद लगता है कि मैंने रूडली बोल दिया।
1: दैट्स बिकॉज आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो ऑटोमेटिक वे ऑफ लिविंग में चला गया है, अवेयरनेस नहीं होगी। इट्स लाइक रॉन्ग टर्न ले लिया, अवेयरनेस नहीं है। 4 किलोमीटर चलाने के बाद पता चला कि रॉन्ग टर्न लिया है। अगर ड्राइव करते हुए अवेयर होते हम जर्नी ऑफ लाइफ पे, तो टर्न लेते ही पता चलता ना कि रॉन्ग टर्न लिया है। ऐसे ये सारा दिन में संस्कार क्योंकि ऑटोमेटिक बन चुका है तो उस टाइम अवेयरनेस नहीं आएगी। अब इम्पोर्टेंट ये भी है कि ऐसा नहीं इसका मतलब कि लोग कुछ भी करें। दिस इज नॉट व्हाट इट इज सेइंग कि ठीक है आपको जो करना है आप करो एंड आई विल नॉट से एनीथिंग। इम्पोर्टेंट इज फर्स्ट आई विल गिव इंस्ट्रक्शन हियर, देन आई विल गिव इंस्ट्रक्शन देयर।

0: say it to the other person, लेकिन get irritated and then say it, तो फिर बात ये हो जाएगी कि आपका सिगरेट पीना मेरे मन की स्थिति को डिस्टर्ब कर देता है, मेरा मन मेरे कंट्रोल में नहीं है, आप सिगरेट इसलिए ना पिए क्योंकि मेरा मन आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है। और दूसरी चीज ये है, मैं ठीक हूं, मेरा मन भी ठीक है बिल्कुल, लेकिन फिर भी आप सिगरेट ना पिए
1: वातावरण खराब होता है मेरे।
0: टू थिंग्स आर कंप्लीटली डिफरेंट। ये चीज सारा दिन देखनी है, कंट्रोल उनको कर नहीं रहे हैं, अपने को कंट्रोल कर रहे हैं और फिर सिचुएशन और लोगों को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं।
1: वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट। मतलब जो मैं उनको कंट्रोल कर रहा हूँ कि अकल नहीं है तुमको, सिगरेट पीते हो, पीना है तो उतर के पियो, गाड़ी रोक लो, इधर जाओ उधर जाओ, हमको तो बोल दो, दूसरे आदमी को पसंद है नहीं पसंद है पूछो, इतना करने के बदले उनको कंट्रोल नहीं करके अपने आप को कंट्रोल करो और उनको
0: इंस्ट्रक्शन भी देना है।
1: आई एम एलर्जिक, मुझे अच्छी नहीं लगती।
0: एब्सोल्युटली। एंड व्हाई यू गिविंग दैट इंस्ट्रक्शन हैज टू बी वेरी क्लियर। That instruction is not for your peace of mind, because you are already peaceful. This is very important.
1: Isn't it for my peace of
0: mind? No, you're already peaceful, because you did not get disturbed.
1: अच्छा, क्योंकि मैंने अपने आप को कंट्रोल करके समझा दिया।
0: कंट्रोल मतलब I did not get fluctuate. आप मुझे नहीं fluctuate कर पाए।
1: तो मैं इस वक्त काम और peaceful और stable हूँ।
0: हाँ, लेकिन परिस्थिति, ऑफिस का काम, घर का स्टाफ, बच्चों का कर्म, ये सब का ध्यान रखना भी मेरी जिम्मेवारी है, तो आई विल गिव इंस्ट्रक्शन, बट दैट इंस्ट्रक्शन इज फॉर द वर्क, फॉर देयर डिसिप्लिन, फॉर देयर बिहेवियर, नॉट फॉर माय पीस ऑफ माइंड। माय पीस ऑफ माइंड नॉट डिपेंडेंट ऑन देम। मैं मालिक बन के फिर बाहर मालिक बनू। जब मैं गुलाम हूं तो मैं मन का भी गुलाम हूं। पहले मैं मन का गुलाम हो गया तो मैं उनका गुलाम हो गया कि तुम मेरी स्थिति को कंट्रोल करते हो, तो फिर मेरी जीवन कैसी हो गई। दैट्स अ स्लेव, स्लेव टू पीपल्स बिहेवियर।
1: पहले स्लेव टू योरसेल्फ भी तो हो गए।
0: जो स्लेव टू योरसेल्फ है वही तो फिर स्लेव टू पीपल्स बिहेवियर। तो पहले अपने मन के मालिक, फिर परिस्थिति के मालिक।
1: वेरी नाइस सिस्टर, वेरी नाइस सर। मेरे अभी तो प्रश्न बहुत हैं और बातें बहुत पूछनी हैं, मगर टाइम हो रहा है, तो शैल वी कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट एपिसोड।
0: थैंक यू सो मच।
1: ओम शांति। थैंक यू सो मच।
2: इफ यू विश टू डिस्कस योर प्रॉब्लम और हैव अ क्वेश्चन टू आस्क और वांट टू नो योर नियरेस्ट राजयोगा मेडिटेशन सेंटर, राइट टू अस एट

0: चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर? हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो।
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स टन विच वी तुहाडी सेवा विच।
2: यू आर लिसनिंग रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन। रेडियो
3: हांजी,
2: स्टे ट्यून्ड।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्स्टन विच वी तुहाडी सेवा विच।

0: हाँ वे सिडनी वालियों, तुसी सुन रहे हो सिडनी दा अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी।
1: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: जिप्पी म्यूजिक अते म्यूजिक टाइम प्रोडक्शंस पेश करते ने पंजाबी फिल्म जुदा अधूरे प्यार दी पूरी कहानी।
1: मेरी जिंदगी चोन वाली पहली कुड़ी भी तू हां ते आखरी भी तू।
0: गुलाब सिद्धू अते जैस्मीन पसीन दी अदाकारी वेखो गिल रौंता दी लिखी अते सिमरजीत सिंह वल्लों डायरेक्ट कीती पंजाबी फिल्म जुदा। रिलीज होवेगी 21 अगस्त नू।
2: सुनो जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
3: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
2: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना तुसी आ किथे जा रहे हो।
3: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
2: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन सिल्वर आइटम्स पूजा आइटम्स सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
3: आहो जी आहो
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
4: दिल तो हर किसी के पास होता है लेकिन सब दिल वाले नहीं होते।
5: सत श्री अकाल टू ऑल द रेडियो हांजी लिसनर्स।

0: सिडनी वाले हो तुसी सुन रहे हो अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी 1674 AM।
1: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साला तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू PR दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, AAT अपील्स, स्किल्ड वीजा, PR, US विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
3: कुछ गल्लां कहनियां नहीं पैंदियां, बस महसूस करनियां पैंदियां ने।
4: हाय नी, इन्ना सोहना मुंडा वी गूंगा है।
3: इस बार गल सिर्फ बोलन दी नहीं, दिल दी सुनन दी है।
4: मुंडे नु चाहिदी है सारी रात फोन ते गल्लां करन वाली कुड़ी, तू बोल नहीं सकदी, ओने नहीं होना तेरे पीछे।
3: लव इमोशंस अदर रिलेशनशिप्स दी कहानी। रिदम बॉयज एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स बोल पावे ना बोल, रिलीजिंग वर्ल्ड वाइड 4 September। रिटन एंड डायरेक्टेड बाय